नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश में वित्त वर्ष 2025-26 में

0: दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रूपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: प्रकृति के साथ प्रगति।

0: शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी नु आ भूज केंद्र से प्रस्तुत छे विचार बिंदु आत्मविश्वास नु अजवाड़ू। पठन करी रहा छे प्रभा चौहान।

रावण के मुख से सीता हरण तथा युद्ध का वृत्तांत सुनकर कुंभकर्ण अत्यंत दुखी हो गया। वह रावण को धिक्कारता है जो जगजननी का अपहरण करके अब अपना कल्याण चाहता है। कहता है, अब भी यदि अभिमान त्याग कर वह श्री राम की शरण जाए तो उसका कल्याण हो सकता है। नारद मुनि से मिला ज्ञान वह रावण को दे देता, किंतु अब बहुत देर हो चुकी है। अतः वह भाई से गले मिलकर युद्ध में जाने को तैयार हो जाता है, जहां उसे समस्त पापों का हरण करने वाले कमल नयन श्री राम के दर्शन होंगे। असंख्य घड़े मदिरा पान और भैंसों का भोजन करके वज्र गर्जना करता कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आ पहुंचा। वहां विभीषण उसके पैरों पर गिर पड़ा और अपने अपमान और निष्कासन की कथा कह सुनाई। कुंभकर्ण ने छोटे भाई विभीषण का साधुवाद किया, फिर बोला, रावण पर काल सवार है, अब भला वह सदुपदेश क्या सुनेगा। धन्य है तू जो अपने सत्कर्म से राक्षस कुल का भूषण हो गया, किंतु अब मैं भी काल के वश में हूं। मुझे अब अपना पराया कुछ नहीं दिख रहा, अतः तू प्रभु के पास वापस लौट जा।

0: निर्मितानां विविध विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। अवधेयास्पदं वर्तते यत् एताभिः परियोजनाभिः क्षेत्रस्य विकासः, आजीविका निर्माणानि तथा जनसुविधानां वृद्धयः च भविष्यन्ति। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा अंक सत्यापनार्थं सहैव पुनर्मूल्यांकनार्थं आवेदन प्रस्तुतेः अन्तिमा तिथिः जून मासस्य सप्त दिनांक पर्यन्तं वर्धिता। सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन संदेशेन परिषदा प्रख्यापितं यत् छात्राः इदानीं रविवासरस्य मध्य रात्रिं यावत् स्व आवेदनानि प्रस्तोतुं शक्नुवन्ति। सीबीएसई परिषदा प्रोदीरितं यत् छात्रहितं मनसि निधाय आवेदन प्रक्रियां पूरयितुं छात्रेभ्यः अतिरिक्त समय प्रदानाय एषः निर्णयः स्वीकृतः। एतस्मात् पूर्वम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः अस्य मासस्य षड् दिनांकं यावदासीत्। परिषदा सर्वेभ्यः योग्य छात्रेभ्यः परामृष्टं यत् ते निर्धारित समये एव स्व आवेदन प्रक्रियां सम्पादयन्तु। केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अघोषयत् यत् अंडमान द्वीप समूहस्य पूर्व समुद्रीय तटात् प्रायः 15 किलोमीटर दूरे श्री विजयपुरम त्रिक्षेत्रे प्राकृतिक गैस भण्डारः अन्विष्टः। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन संदेशेन श्री पुरी प्रख्यापितवान् यत् एतत् अन्वेषणम् अण्डमान समुद्रस्य विशाल ऊर्जा क्षमतां पुनः प्रमाणीकरोति। सहैव अस्मिन् क्षेत्रे प्रचल्यमानस्य गवेषणाभियानस्य एकाम् अपरां सफलतां च सूचयति। सः अकथयत् यत् ऑयल इंडिया इति संस्था सम्प्रति गैस द्रव्यस्य संरचनां तथा च तस्य ऊष्मीयमानं मूल्यांकितुं गैस सैम्पलिंग इति प्रतिचयनस्य कार्यं करोति। अन्ताराष्ट्रिय पर्यावरण दिवसावसरे श्री पुरी महोदयेन नवदिल्ल्यां फ्लेक्स इंधन वाहनेभ्यः E85 इंधनस्य शुभारम्भो विहितः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः ह्यः अब्रवीत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः आर्थिक परिष्काराणां लक्ष्यस्य अन्तर्गतं भारतस्य विकासयात्रा देशस्य आर्थिक समृद्धिम् अविरतं वर्धयति। अस्मिन् आर्थिक वर्षे पञ्जीकृतं 7.7% जीडीपी विकासं निर्दिश्य श्री शाहः प्रावोचत् यत् एषा उपलब्धिः गत द्वादश वर्षेष् भारतस्य अर्थव्यवस्थया सुदृढतां प्रकटयति। अथ च क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान दलयोर्मध्ये स्पर्धा अद्य न्यू चण्डीगढ़स्य मुलानपुर स्थिते महाराजा यादवेन्द्र सिंह अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे आरप्स्यते। अस्यां स्पर्धायां शुभमन गिलः भारतीय दलस्य नेतृत्वं विधास्यति। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं प्रातः 9:30 आरप्स्यते। पुरुषाणाम् अंडर 18 इति अष्टादश एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपान्त्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंक अंतरालेन पराजितम्। अपरतः महिलानाम् अष्टादश एशिया कप प्रतियोगितायाः उपान्त्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी है। दमोह में कल 2,970 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य

0: आगे बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ठीक करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50 गीगावाट अकेले गुजरात की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमरीका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग है। इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुजोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुजोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देशभर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। एशिया कप अंडर-18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका निगाहारा ने कल सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर-18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

www.gov.info. निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के नियम असाधारण रूप से मजबूत बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है।

प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में

0: yine ek yap grubun yazar Dedalis Kudu ortasın çimeliğini ek yap çosa kazar Nusu Bayalis Kudu ve garip gibi hangi kartı Ataş Minesi maça kumbi.
1: Yurttaş 2025 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
2: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,400 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कमिश्न।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, विदेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई

0: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCTCI द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.nctci.gov.in पर लॉग इन करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को

दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय

सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांति दूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लगान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम दल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांति दूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडंगू नदी के पास ईरान के तटीय निगरानी रेडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे

कन्नौज जिले के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम,

अश्विन ने 9वीं शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञा राम ने अंतिम दौर में जर्मनी की विसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। 9वीं शतरंज में प्रज्ञा रोमंग ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।

शीर्षक से लिखा है एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियन कंपनी देश में 3 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयरटंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान। इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन पर्पलेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मामले में अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेश

0: हमारो तीर्थ कौन करे। सची गाल है का हन जीवन जी अंदर बड़े हथ ज रही वो जडे ही जीवन पा छो ना तड़े कोई समसान सुधी नोट जी 500 जी की 100 जी की पिज्जा जी अरे डो जी को गठरी बेगो नींदे जको हथ में विंदी के नख में सरी पेरा हु बो ही मुड़े उतारी वजदा। ही संसार जी सच्ची वास्तविकता है। ए हिलाट मजे जो भजन सुनया मजा आवे आत्मणी के पण आनंद थे हुंदो तो हलो हाने पा जको शिक्षक जो धर्म आए केड़ी जो आए कोरो आए मास्तर कोरो कोरो कम कई ता ने केड़ा हुए ता एन मणि जी लाट मजे जी गाल आज पांजे वच चेला करी ने आया ही डॉक्टर कोमल बेन सच दे तो हलो पांजी लाट मजे जी ही शिक्षक जो धर्म जी गाल सुनो।
1: विद्यार्थी जे विकास ले करे ने शिक्षक जी कोरो भूमिका होनी खपे ते जी अज गाल करनी आए तो कबीर जी जो एक दोहो मुझे याद अजे कबीर जी ई चेता गुरु कुम्हार शीश कुंभ है गाड़ी काढ़ी काढ़े खो भीतर हाथ सहार दे बाहर बाहे जो शिक्षण ए अनेक ध्रुवी प्रक्रिया आए जी शिक्षक विद्यार्थी ने समाज मुख्य ध्रुव तरीके कम करिए था। शिक्षक के विद्यार्थी जो भविष्य जो घड़तर करे जो हुए तो तदे शिक्षक के कुम्हार जेड़ो कम करे जो है कुम्हार जी मटलो घरे अने इन मटले के घाट दे तो कींच शिक्षक पर विद्यार्थी जो भविष्य जो घाट गढ़िए था। विद्यार्थी के हकारात्मक वातावरण पूरो पाड़े ने इन्हीं के प्रोत्साहित करी दे इन्हीं जे व्यक्तित्व जो जो उणप इनके सुधारी ने सर्वांगीय विकास करे जी जवाबदारी शिक्षक ते आए निशार ई समाज जी लघु आवृत्ति आए की शिक्षक पर मास्टर चोवा जैता इतने मास्टर के विद्यार्थी जे सर्व क्षेत्रीय घड़तर करे जी जवाबदारी निभाए जी आए ने ए पर हकारात्मक अभिगम जी सतवारे रही ने ही कम करे जो आए निसार रूपी बगीचे में फुल रूपी जो को विद्यार्थी के खिलवे जो कम आए शिक्षक के करे जो आए विद्यार्थी जे भविष्य के घरेले करे जो को विद्यार्थी रूपी फुल आई इनके खिलवेले करे माड़ी रूपी शिक्षक के बोरोज सावचेती से कम करे जो है जीवन लक्षी ज्ञान जो सिंचन करी दे कोई पा विद्यार्थी रूपी फल कर्माई नवीने ते जो ध्यान शिक्षक के रखे जो है शिक्षण की मिनी माड़वे जी पिंड जी आऊंगी अमूल्य संपत्ति है आजू बाजू जे वातावरण में जब मारू रोज की ने की सिख दो हुए तो सतत सिखदा रे जी वृत्ति मारू के जिज्ञासु बनाए थी शिक्षण ला करी ने अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द वापराते तो एजुकेशन शब्द जी उत्पत्ति मूल लेटिन भाषा जे एजुकेटम शब्द पर थी थैया एड़ो मना जे तो किशोरलाल मशरूवाड़ा ई चेंता के विद्या करता केड़वणी के चिड़िया तो शब्द छे हे विधान वाचे भेरोच आके स्पर्शी विने केड़ो है मारू के केड़वी की केड़वणी अक्षर ज्ञान इतले अखरे जा ज्ञान ने चौपड़ी में जा मिल तो ज्ञान इत मात्र औपचारिक शिक्षण चेक सका जे पर मिनी विद्यार्थी जे व्यक्तित्व जो जड़े सर्वांगी विकास करे में अचे तड़े संपूर्ण केड़वणी आकार पामे थी संपूर्ण केड़वणी के पैसे ले शिक्षक जो फाड़ो अमूल्य हुए तो औपचारिक शिक्षण अनौपचारिक शिक्षण अवैधिक शिक्षण इन्हीं त्रोय प्रकारे मिजा निसार में

के मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा।

0: सिलसिले में भी उसके प्रयास सफल होते जा रहे हैं। मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है।
1: पर्यावरण दिवस में अनुलक्षीने वडाप्रधान श्रीए दीव खाते न सोलर पावर अने स्वच्छता अभियान विषय बातों करी हती।
0: आज दीव में दिन में जितनी बिजली की डिमांड होती है वो सोलर पावर से ही पूरी हो रही है और हमें तो इसे और आगे लेकर जाना है। घरों में भी सोलर ऊर्जा से बिजली मिले, यही नहीं अतिरिक्त बिजली से परिवार की आय भी हो, इसके लिए रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की पहल शुरू हुई है। मैं इन उपलब्धियों के लिए भी आप सबकी सराहना करता हूं। साथियों, साथ साथ मुझे ये भी बताया गया है भ्रमण के लोग इन दिनों यहाँ स्वच्छता अभियान भी चला रहे हैं। ये दिखाता है कि स्वच्छता किस तरह दमन के जनजीवन में संस्कार बन चुका है और ये संस्कार स्वच्छता में नजर आ रहे हैं। मैं इस जन भागीदारी के आपके प्रयासों के लिए दमन के लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन हमारे यूनियन टेरिटरी स्टेट इसी संकल्प को साकार कर रहा है। आज एक और यहाँ हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। साथ ही यहाँ करीब 1 लाख एक पैर माँ के नाम 1 लाख पौधे भी लगाए जा रहे हैं। मुझे गर्व है कि एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने सरकारी इमारतों में 100% सौर ऊर्जा के इस्तेमाल की उपलब्धि हासिल की है।
1: दमन माटे खास नमो एयरपोर्ट आइकोनिक ब्रिज तेमज कन्वेंशन सेंटर विषय बोलता वडाप्रधान श्री कहूं हतु के
0: दादरा और नगर हवेली दमन और दीव भी वही सपना देख रहे हैं। ये नमो एयरपोर्ट दमन गंगा नदी पर बनने वाला आइकोनिक ब्रिज बीच फ्रंट उस पर बनने वाला कन्वेंशन सेंटर ऐसे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हम भविष्य के बड़े नए संकल्पों की नींव रख रहे हैं। इन प्रोजेक्ट के जरिए आप लोगों की आवाजाही आसान होगी, यहाँ बिजनेस के लिए नई संभावनाएं बनेगी, दमन के दोनों किनारों पर विकास की गति और तेज होगी। साथियों, यहाँ हॉस्पिटैलिटी इकोनॉमी से जुड़े अवसर बढ़ेंगे और साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर जैसी सुविधा से व्यापार लॉजिस्टिक को भी नई गति मिलेगी।
1: आरोग्य, भारत डिजिटल विजन, हेल्थ केयर, एजुकेशन तमज टूरिस्ट पॉइंट तरीके दमन में विकास माटे वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदी आ मुजब जणावी हतो।
0: साथियों, देश का बहुत बड़ा फोकस टूरिज्म पर भी है। हमारा प्रयास है कि टूरिज्म से स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा मिले, छोटे छोटे स्थानों को भी बड़े बड़े अवसरों के साथ जोड़ा जा सके। देखो अपना देश, जैसे प्रयासों ने लोगों को देश की विविधता के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया है। आज भारत में हेरिटेज टूरिज्म, बीच टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, इन सेक्टर को नई ऊर्जा मिल रही है। साथियों, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में तो पर्यटन भी इतनी असीम संभावनाओं वाला एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र को प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत वरदान भी मिला है। इसलिए पर्यटन को लेकर देश ने जिन नीतियों पर काम किया है, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव को उसका बड़ा लाभ मिल रहा है। 2021 में यहाँ करीब 6 लाख टूरिस्ट आए थे, 2025 में संख्या बढ़कर लगभग 50 लाख तक पहुंच गई है। यानी कुछ ही वर्षों में टूरिज्म फुटफॉल में करीब 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। ये बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सुविधाओं, साफ सुथरे बीच की वजह से संभव हुआ है। दमन लाइट मार्केट, राम सेतु सी फ्रंट, नमोपथ सी फ्रंट, नानी दमन फोर्ट, गंगेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ऐसे अनेक स्थान आज इस पूरे क्षेत्र की नई पहचान बन रहे हैं।
1: वडाप्रधान श्री ने सूरत मुलाकात में आवरी लेता रेडियो अहवाल मीटे सूरत मीटिंग, टेक्निकल सहयोग नितिन कटारिया अने विपुल जाधव, अने निर्माण कार्यक्रम अधिकारी कमलेश मिश्रा। वडाप्रधान श्री ने दमण की मुलाकात में आवरी लेता रेडियो अहवाल मीटे दमण आकाशवाणी की टीम, प्रवक्ता नितेश पटेल, टेक्निकल सहयोग हिस्मुख राठौर अने चंद्रकेश गुप्त, निर्माण कार्यक्रम अधिकारी हरेश पटेल। हमने आप संभ ગઈકાલ તારીખ 5મી શુક્રવારે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની સુરત અને દમણની મુલાકાતને આવરી લેતો રેડિયો અહેવાલ।
2: શ્રોતા મિત્રો, આપ સાંભળી રહ્યા છો આકાશવાણીનું અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્રનું પ્રસારણ। આજે નવ વર્ષે પણ અડેખમ ઉગે છે આપણી આકાશવાણી। સમય બદલાયો, સંજોગો બદલાયા, પરિવર્તનની નવી લહેરો ઉભી, આકાશવાણી હંમેશા ભારતીય સંસ્કૃતિ અને પરંપરાને નામ આપ્યું, તેનું જતન કર્યું, વેદોની ઋચાઓ જેટલી સ્પષ્ટ

सुनिए, आप समझ रहे हैं ता हिंदी की गजल आकाशवाणी ने अहमदाबाद वडोदरा केंद्र नु प्रसारण आप समझ रहे हैं। बराबर 12 वगे आप संभव शो मुख्य समाचार।

0: स्थिति के वो बहुत ही भयंकर था। यह होते थे अखा भारत देश में लगभग अर्थिक यज्ञ विद्रोह कोष की स्थापना करी एवं एक अहमदाबाद और अहमदाबाद केंद्र माटे गुजराती भाषा में विज्ञान कार्यक्रमों तैयार कर सके एवं बजट में जरूरी थी। छापा भी जाहरा था भी एक प्रमाण मैं अपना करेलू दूसरा वक्त त्या स्कूल में हायर सेकेंडरी में विज्ञान शिक्षक के लिए बहुत सुखी रहना मजा पड़ती थी।
1: जी जी
0: कोई अफसोस का संतोष जो होता है पर

0: नमस्कार, मैं गुप्ता। मेरे सामने रेडियो पर तथा कार्यक्रमों का प्रसारण समय सैकड़ों के हजारों के लाखों अपने अंदाज में थे कौन कह रहे कितना सा बढ़ता है सर
1: जी,
0: पर एक मक्का विषय वर्ग में वो मेरे पास पहुंचा नहीं सको। अरे अब अध्यमी एक
1: बिल्कुल
0: मुनाम था के स्कूल में क्लासरूम टीचिंग करता आप टीचिंग अच्छे
1: बिल्कुल
0: पर एक विषय थोड़ा ऊपर
1: जी।

0: बताना संचय अपनी लाइब्रेरी में खूब सारी डेटा खत्म
1: बिल्कुल
0: क्योंकि अत्यारा बड़ा कंप्यूटर हार्ड डिस्क लिए मुझे ये वक्त
1: नहीं तो
0: रिकॉर्डिंग मोटे मोटे बराबर हार्ड डिस्क ऊपर थे था पची नवा सुधारा प्रमाण मैग्नेटिक टेप ऊपर एन रिकॉर्डिंग थवा लगे पुराने प्रोग्राम में सुधारा करवा अने के बिन जरूरी भाग काढ़ी रखवा संगीत उमरवू कटक साउंड इफेक्ट जो अपने कई एवं अवाजों अंदर उमरवा રેકોર્ડિંગ શરૂ કર્યું મારા ઘરના ધાબા ઉપર.
1: ઓહો,

0: इस केंद्र का जवाब किस कारण है, वो कारण है तो वो कई दिशा में नहीं जाऊंगी। देखो भी वो जानता हो नाट्य कलाकारों ने हाथ में अब स्क्रिप्ट आदि शक्कर करके दोनों को स्कोप ना दो
1: जी।
0: नहीं

शब्दों में भारतीय यादों आठवीं जून 2026 के दिन से जब आकाशवाणी तेरी गौरवमय प्रसारण यात्रा में 9 वर्ष पूर्ण करशे त्यारे आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा केन्द्र रजू करशे। आकाशवाणी ना भूतपूर्व केन्द्र नियामक जाणीता कवि अने संचालक तथा भारत सरकार ना पद्मश्री पुरस्कार थी सम्मानित श्री तुषार शुक्ला साथे ने विशेष मुलाकात तारीख 8 जून सोमवार बपोरे 12:00 मिनिटे आ खास मुलाकात सांभळवानुं चूकता नहीं।

0: यात्रामा गौरव भई नेउ वर्ष रेडियो बदलाए समय बदलायो पर हमेशा अपने साथ रहे आकाशवाणी आकाशवाणी नेउ वर्ष पर प्रत्येक 5 दिनों अनुभव करावती आपने आकाशवाणी नेउ वर्ष जी हाँ दोस्तों श्रोताओना हृदय में पोतानी प्रसारण यात्रा में सफल नेउ वर्ष पूर्ण करशे आकाशवाणी तारीख 8 जून 1936 की सतत आत्मी सेवा में आकाशवाणी एक नगरी नौ वर्ष के साथ एक अकबंध अतुट विश्वास आकाशवाणी
1: आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा राजकोट ने पहुंच बराबर 1 वगे आप संभालशो दिल्ली थी प्रसारित हिंदी में समाचार
2: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता आत्मविश्वास निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में

अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में

भारत लेटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लेटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। भारत अमेरिका सेना के अधिकारियों की वार्ता को 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीतिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमांड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल ने की। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल में आज भारतीय आम के प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रमुख भारतीय फल आयातकों ने हिस्सा लिया। इसमें महाराष्ट्र के अल्फांसो और केसर, आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश के लंगड़ा दशहरी और गुजरात के पके राजपुरी आम शामिल हैं। अमरीका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही पूरा नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पिछले वर्ष जुलाई में सिएटल में भारतीय आम की शुरुआत की थी। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के ताकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जय भक्ति कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। दोस्तों आज है 6 जून। 6 जून 1919 के दिन अविभाजित भारत के जलालपुर जट्टन में जन्मे भारतीय हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार, पटकथा लेखक और कवि राजेंद्र कृष्ण का जन्मदिन। हम सबकी ओर से राजेंद्र कृष्ण जी को आज वो जहां भी हो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म खानदान के इस गीत से, जिसके लिए राजेंद्र किशन जी को श्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। आवाज लता मंगेशकर की।

दोस्तों, राजेंद्र कृष्ण जी भले ही हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन आज राजेंद्र कृष्ण जी दुनिया के हर कोने में अपने गीतों की शक्ल में मौजूद है, जहां हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है। राजेंद्र कृष्ण जी का पूरा नाम राजेंद्र कृष्ण दुग्गल था। उन्हें कविता का शौक बचपन से ही था। मन बहुत कुछ कहना चाहता था। वो शब्द डायरियों के पन्नों पर दर्ज किया करते थे और कविता, शायरी, गजल रचने लगे। तो आइए सुनते हैं मनमाड की आवाज में देख कबीरा रोया फिल्म का ये गाना।

दोस्तों, राजेंद्र किशन जी को 1942 में शिमला के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में क्लर्क की नौकरी मिल गई। साथ साथ अखबारों में प्रकाशन के लिए कविताएं भेजते रहे। धीरे धीरे भीतर का कवि आकार लेने लगा। मंचों पर कविता पढ़ने जाने लगे और उन्हें वाहवाही मिलती रही। पर बात वैसी नहीं थी जो राजेंद्र किशन जी चाहते थे। 1945-46 की बात है। उन दिनों शिमला में बहुत बड़ा मुशायरा हुआ करता था, जिसमें हिंदुस्तान के लगभग सभी बड़े शायर इकट्ठे होते थे। वहां राजेंद्र किशन ने अपनी गजल पढ़ी और कुछ ऐसी दाद मिली कि राजेंद्र जी के दिल ने कह दिया, हाँ अब तुम शायर हो। जब राजेंद्र जी गजल पढ़ चुके, उसके बाद जिगर मुरादाबादी मंच पर पहुंचे। जिगर मुरादाबादी को किसी ने कहा कि जनाब, आप इस नए शायर के कुछ गजब के शेर सुनने से रह गए। जिगर मुरादाबादी ने उस नौजवान शायर को फिर से शेर सुनाने को कहा और राजेंद्र जी ने मतला पेश किया। कुछ इस तरह वो मेरे पास आए बैठे हैं, कुछ इस तरह वो मेरे पास आए बैठे हैं, जैसे आग से दामन बचाए बैठे हैं। इस मतले को सुनकर जिगर साहब बहुत देर तक अपना सिर हिलाते रहे और वाह वाह बोलते रहे। तभी राजेंद्र किशन जी ने तय कर लिया कि अब उन्हें नौकरी से इस्तीफा दे देना चाहिए और एक शायर की जिंदगी जीनी चाहिए। नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वह मुंबई चले आए। उनके जहन में जिगर मुरादाबादी का देर तक हिलता हुआ सिर था और कानों में वाहवाह की गूंज। उन्हें भीतर से इस बात का विश्वास था कि जिगर साहब ने मान लिया है तो दुनिया भी मान ही लेगी। तो आइए सुनते हैं

1947 में देश आजाद हुआ और 1947 में राजेंद्र जी को पहली फिल्म चिंता की पटकथा लिखने का मौका मिला। उसी साल किशोर शर्मा निर्देशित फिल्म जंजीर के गाने भी राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखे। राजेंद्र कृष्ण का पहला मशहूर गीत महात्मा गांधी की हत्या के बाद लिखा गया था। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी।

वो पहला मौका था जब राजेंद्र कृष्ण ने भारत की सामूहिक चेतना को आवाज दी थी। उसके बाद तो कई मौके आए जब देश राजेंद्र कृष्ण के गीतों में लहराया। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में अदालत फिल्म का ये गाना।

दोस्तों 1948 में बनी फिल्म प्यार की जीत का सुरैया की आवाज में गाना था, तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया, बहुत प्रसिद्ध हुआ। 1949 की फिल्म बड़ी बहन में राजेंद्र जी ने क्या मशहूर गाने लिखे, चुप चुप खड़ी हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है पहली मुलाकात है। लता मंगेशकर और प्रेम लता की आवाज में इस गाने ने उस समय के युवाओं को दीवाना कर दिया। गली गली गांव गांव नुक्कड़ चौराहों से लेकर चारों ओर इस गानों ने धूम मचा दी। इस गीत की सफलता से खुश होकर फिल्म निर्माता निर्देशक डी कश्यप ने राजेंद्र किशन जी को इनाम के तौर पर ऑस्टिन कार दी थी, जो उस समय बहुत कम लोगों के पास हुआ करती थी। तो आइए अब सुनते हैं बड़ी बहन फिल्म का ये गाना।

0: दोस्तों, आकाशवाणी के अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और भूज केंद्र से आप सुन रहे हैं जय भारती कार्यक्रम।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: दोस्तों, 1951 में आई फिल्म बाहर में राजेंद्र किशन ने गाना लिखा और शमशाद बेगम ने गाया, सैया दिल में आना रे, वाके फिर न जाना रे, चम चमा चम चम। ये गाना चारों ओर छा गया। 1953 में फिल्म अनारकली आई, जिसका राजेंद्र किशन द्वारा लिखा गाना, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे छोटी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, बड़ा मार्मिक और मशहूर गाना था। तो आइए अब सुनते हैं शमशाद बेगम की आवाज में बाहर फिल्म का ये गाना।

अगस्त 1953 में फिल्म लड़की रिलीज हुई। राजेंद्र कृष्ण ने क्या गाने लिखे, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, सारे जहां में ऐसा कोई रतन नहीं है। हर देशभक्त उस वक्त इस गीत को गाता हुआ मिलता था। नारी सशक्तिकरण का भी इस फिल्म में एक गाना था, मैं हूँ भारत की नार, लड़ने मरने को तैयार, मुझे समझो ना कमजोर, लोगों समझो ना कमजोर। इस गाने को जितने बल के साथ राजेंद्र जी ने लिखा था, उसी तेवर के साथ लता जी ने गाया भी था। पूरे देश में महिलाएं इस गीत से अजब सा तेज और ओज प्राप्त करती थी। लड़की फिल्म में और एक अलग अंदाज का गीत था जो काफी मशहूर हुआ था, जिसको गाया था लता मंगेशकर ने। तोड़ के दुनिया की दीवार, बलमवा कर ले मुझसे प्यार, जो होगा देखा जाएगा। 1954 में आई फिल्म नागिन के एक से बढ़कर एक गाने, मन डोले मेरा तन डोले, मेरा दिल ये पुकारे, जादू कर सैया छोड़ो मेरी भैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दो, क्या गाने लिखे थे राजेंद्र कृष्ण जी ने, जो आज भी लोगों के दिलों में बसा है। तो आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में लड़की फिल्म का ये गीत।

अगस्त 1957 में एक फिल्म आई थी देख कबीरा रोया, जिसका राजेंद्र जी का गाना कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झंकार लिए जो हमने सुना, क्या गाना था। 50 के दशक में राजेंद्र कृष्ण जी छाए रहे। 1961 की फिल्म संजोग का गाना वो भूली दास्ता लो फिर याद आ गई, 1962 की फिल्म मनमौजी के गाने, 1964 की जहां आ रहा, 1966 की नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, 1968 की पड़ोसन, क्या बेहतरीन गाने दिए। 60 और 70 के दशक में राजेंद्र कृष्ण जी ने फिल्मों की कहानी, संवाद और पटकथा ज्यादा लिखी और अपने काम से सबको चौंकाते रहे। 1970 की फिल्म गोपी का गाना सुख के सब साथी दुख में न कोई घर घर में जीवन दर्शन कराता है और अपनों से छोटों को सिखाने समझाने का काम करता है। दोस्तों, यहां पर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि राजेंद्र कृष्ण जी को घोड़े की दौड़ का बहुत शौक था। 70 के दशक में उन्हें 46 लाख का इनकम टैक्स फ्री जैकपॉट घोड़े की दौड़ में मिला था। ये राजेंद्र कृष्ण की किस्मत थी जिसने उन्हें उस दौर का सबसे अमीर लेखक बना दिया था। राजेंद्र कृष्ण ने फिल्मों में हजारों गीत लिखे, करीब 100 से ज्यादा फिल्मों की कहानी, संवाद तथा पटकथा लिखी। उनकी कुछ मशहूर फिल्मों में पड़ोसन, छाया, प्यार का सपना, मनमौजी, धर्माधिकारी, माँ बाप, साधु और शैतान जैसी फिल्में हैं। दोस्तों, राजेंद्र कृष्ण जो गीत लिखते थे उनके बोल लोगों की जुबां पर चढ़कर मुहावरों में बदल जाते थे। उनके फिल्मी गीत हमारी भाषा का आकार बढ़ाते थे और हमारे एहसासों को व्यक्त करने का हमें एक नया तरीका देते थे। 23 सितंबर 1987 के दिन हमारे बीच से चले जाने वाले राजेंद्र कृष्ण जी आज भी उनके गीतों के माध्यम से हमारे भीतर बसे हुए हैं, हमारे दिमाग की दीवार पर रचे हुए हैं और हमारी अभिव्यक्ति में मिले हुए हैं। कार्यक्रम का समापन करते हैं फिल्म भाभी के इस गीत से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने।

जहाँ वो मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवा।

0: विशाल भारती ये था फौजी दोस्तों के लिए कार्यक्रम प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा राजकोट और भुज केंद्र से किया गया।
1: ठीक 2:15 पर सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित लोकहित समाचार।

0: 你的。प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत

0: है उसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल है। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: भारत के तीन दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नगन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए 10 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल तमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है।

0: ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
1: पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
2: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजंग दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्यकुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। यह मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि यह मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खराल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

विशिष्टता बनाई हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा

पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही

0: प्रवीण झारखंड के दो दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने स्वर्ण नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 85 ओवर में 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। केएल राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माही में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल की तराई वाले क्षेत्रों तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी स्थिति बनी रहने का अनुमान है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is

नमस्ते, यह आकाशवाणी है। हमारे मंत्री खूबचंदन खान देश और विदेश का समाचार बदला। सबका पहले मुख्य समाचार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी माली सलाहकार काउंसिल जो मेम्बर सा बैठक बजे से जानते गई। आरबीआई बैंक भारत में सीरप कारण है। संजू नारायण विदेशी सीरप कारण के हैं। केतरा ने इस मंजी सीरप सीमा में बनाया कभी सीबी ऐसे नारपुर जी तस्दीक बेहद जांच जलाए दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख है। सुबह बधाई पंजाब में अब सुबह फिरोजपुर फैजलिका रोहतरी एक ट्रक के साथ वाहन की टक्कर में नौ मान की मौत थी। केरलम के माहे में सुबह कई तेज बरसात में रेड अलर्ट जाहिर है। श्रेष अयर सूर्य कुमार यादव जी जाए थे T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम जो कप्तान बनो वैभव सूर्यवंशी पहला बेरो टीम में शामिल। हमारे समाचार तफसीलवार बुधवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी माली सलाहकार काउंसिल के मेंबर से बैठक की सिद्धांत गई। प्रधानमंत्री ए काउंसिल आलमी मुश्किल दौरान भारत के आर्थिक विकास के वाधारे में मुख्तलिफ विचार उपायों पर चर्चा की। जीवन सतह ए व्यापार में संजाई आने लाए मुख्तलिफ सुधारों के भी ख्याल वट कई। मंदरन ओला एशिया जंग ते भारत ए विश्व के पवंदा असर जो भी तकमीना पेश कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहो आए आलमी माली संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद गैर मामूली रूप से मजबूत है। श्री

0: योजनाओं की शुभ शुरुआत की। इन मौके पे श्री मोदी एक आम सभा में चयन कर भारत दुनिया की सब का तेज वदंदा अर्थव्यवस्था में एक आए।
1: भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: बचाव मंत्री राजनाथ सिंह चयो तो अहले वक्त में जिन्हें केतरा ही मुल्क माली मुश्किलात में सामनो कर रहा आहन भारत दुनिया जी सब का तेज तरीन खास अर्थव्यवस्था बनेला आहे। एक रिपोर्ट
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता नवाचार बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उभारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण जन और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: आरबीआई विदेशी पोर्टफोलियो वारंसी रखकरण द्वारा सरकारी सिक्योरिटीज यानी जमानतों में सीड़प व्यवस्थ नियमन में अहम बदलाव कया आहन। नवन नियमन के तहत आम रिवाजी सीड़प करण वारन विदेशी सीड़प करण के हाने केतरे में किस्मन जी सीड़प सीमा में रियायत दिनी वेंदी। नयों रहनुमाई हिदायतों तुरंत असर हेठ लागू थी वेंदी। सीबीएसई मार्कुम जी तस्दीक और बेहर जांच लाए दरख्वास्त जमा करण की आखिरी तारीख वधाए करे 7 जून कई आहे। सीबीएसई सोशल मीडिया पोस्ट में चयो तो शागिर्द हाने सुभाणे अध रात ताईं पंहिंजी दरख्वास्त के जमा करे सघंदा। हिन खां अवल दरख्वास्त जमा करण की आखिरी तारीख 6 जून तय थी हुई। सीबीएसई सभिनी हक़दार शागिर्दनि खे अपील कई आहे त वधि में आखिरी तारीख खे ध्यान में रखंदे मुकरर कयल मुद्दत जे अंदर दरख्वास्त जे अमल खे मुकमल कन। हे समाचार परे आकाशवाणी ते बुधी रहियो। वधीक समाचारनि जी तफ़सील जे लाइ तव्हां असांजी वेबसाइट newsonair.gov.in खे फॉलो करे सघो था। हे समाचार तव्हां असांजी यूट्यूब चैनल एयर न्यूज गुजरात ते बि ॿुधी सघो था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई इंग्लैंड और आयरलैंड संगड थे वाली टी20 सीरीज लाए भारतीय टीम की पधराई कर छी है। श्रेयस अय्यर के सूर्य कुमार यादव की जाए पर टीम जो कप्तान बनाया वो है। तिलक वर्मा नायब कप्तान होंद वैभव सूर्यवंशी के पहले भेरों टीम में शामिल कर वो है। प्रिंस यादव के भी टीम में जय मिली वही है। पंजाब में अज सुबुह फिरोजपुर फैजलिका रोड पे एक ट्रक से वाहन के टक्कर में 9 माण्हू मारजी विया ए 12 जख्मी थी पिया। सभी डुखायल एक ही कुटुंब जा मेंबर हुआ जेके ब्यास नदी में पैंजे सगे वारे के अस्थियों जो विसर्जन करना पे वनन। आला पुलिस अमलदार हादसे वाली जगह पे पहुंचो ए मकानी माण्हू की मदद से बचाव मुहिम हलाई गई। हिमाचल प्रदेश से मुख्तलिफ एवाजन में अज मौसम साफ रहे। असाजे खातो चयो तो गुजरियल कुछ दिन की गर्मी का खुशगवार मौसम माण्हू लाइ तमामु घणी राहत खणी आयो आहे। हिकु रिपोर्ट
3: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और

0: घरों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। नितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आबाया महकमे केरलम ऐं माहे में सुभाणे ताईं तेज बरसात लाइ रेड अलर्ट ज़ाहिर कयो आहे। उत्तर ओभरी भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी ऐं कराईकल में बि ईंदड़ ॿिनि खां टिनि ॾींहनि जे दौरान तेज बरसात पइजी सघे थी। ओलह बंगाल जे हेठाई वारनि इलाइक़नि में तेलंगाना, कोंकण, गोवा, विच महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान ऐं निकोबार ॿेटनि में लतोड़े लक्षद्वीप में पिण अहिड़ी ई सूरत हाल जा इम्कान आहिनि। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, ओभरी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड ऐं जम्मू कश्मीर में अॼु वॾे चमकण ऐं वाचूरे जा इम्कान आहिनि। भारत चयो त पाकिस्तान गॾियल राष्ट्र सलामती काउंसिल जी पंहिंजी आरजी मेंबरशिप जो ग़लति इस्तेमाल जम्मू कश्मीर लाइ कूड़ा दाणा फैलाइण वास्ते करे रहियो आहे। भारत जे दाणा नुमाइंदे पी हैरिस ख़बरदार कयो त पाकिस्तान खे पंहिंजी ज़िमेवारीअ जो अहसास हुअण घुर्जे। मुख्य समाचार हिकु भेरो ॿीहर ॿुधंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ अॼु माली सलाहकार काउंसिल जे मेंबरनि सां बैठक जी सदारत कई। आरबीआई बैंक पाकिस्तान में सीड़पकारीअ खे साइंजो बणाइण लाइ विदेशी सीड़पकारनि खे हाणे केतिरनि क़िस्मनि जी सीड़प सीमाउनि में रियायत ॾिनी। CBSE मार्कुनि जी तसदीक ऐं ॿीहर जांच जे लाइ दरख़्वास्त जमा करण जी आख़िरी तारीख़ सुभाणे ताईं वधाई। पंजाब में अॼु सुबुह फिरोजपुर फाज़िलका रोड ते हिकु ट्रक सां वाहन जे टकर में नव माण्हुनि जी मौत। केरलम ऐं माहे में सुभाणे ताईं तेज़ बरसात लाइ रेड अलर्ट चढ़ियो ऐं श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव जी जाइ ते T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम जो कप्तान बणियो। बाबा सूर्यवंशी पहिरियों दफ़ो टीम में शामिल थियो। समाचार समाप्त थियो। इजाज़त ॾींदड़, नमस्ते।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है।
1: देश का 60% पॉपुलेशन बिना पार्टी पाए हुए, यानी कि देश युवा देश है। इस देश के युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नगरनिया में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 7 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली है और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में आर्थिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो और 15 और 20 किलो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिल का सड़क पर एक

0: टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 आदमी घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड़ तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एक मैच टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। केएल राहुल ने भी 2 शतकीय पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानी पूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी। मौसम विभाग ने केरल में और माही में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तेलंगाना कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी भुज प्रस्तुत मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आर्थिक सलाहकार परिषद सभ्य साथ महत्वपूर्ण बैठक योजी। वैश्विक अस्थिरता वच्चे भारत में आर्थिक वृद्धि वधारवा पर करू मंथन। अमदावादना पोलिस कमिश्नर ज्ञानेन्द्र सिंह मलिक ने गुजरात में नवा डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पोलिस एटले राज्य नवा टाइमी डीजीपी तरीके सत्तावार निमणूक कराई। गांधीनगर खाते 2 दिवसीय पर्यावरण कार्य शिविर नो शुभारंभ करता अर्जुन मोटवाड़िया पर्यावरण की सुरक्षा ने सरकार और नागरिकों की गणेली सामूहिक जवाबदारी। आयरलैंड और इंग्लैंड प्रवास भारतीय T20 टीम जाहिर। श्रेयस अय्यर ने नवा कैप्टन तरीके नियुक्त कराया जारे 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने टीम में स्थान अपायु। कच्छ जिला पंचायत की विविध समितियों की रचना माटे राजकीय गतिविधियों तेज बनी। जून महीना ना तीजा सप्ताह में योजनारी सामान्य सभा में सत्तावार जाहरात थवानी संभावना। चौमासानी ऋतु में सुरक्षा ना पगले कच्छ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आगामी 4 जून थी 1 ऑगस्ट सुधी दरियाकांठा और क्रीक विस्तार में मछीमारी पर काम चलाव प्रतिबंध मुकायो। अबड़ासा तालुकाना बांडियागा ने 240 लाख थी वधुना खर्चे निर्माण पामनारा अद्यतन माध्यमिक शाला ने संकुल नु धारासभ्य प्रद्युम्न सिंह जाडेजा ना हस्ते भूमि पूजन करायु। विश्व पर्यावरण दिवस निमित्ते अदानी ग्रुप द्वारा मुंद्रा और आसपास विस्तारों में मियावाकी पद्धति 30,000 थी वधु वृक्षों वाववानु और 10 तलावों पुनर्जीवन नु अभियान शुरू करायु। हवामान विभाग द्वारा राज्य में आगामी 7 दिवस सुधी वरसाद की आगाही कराई। 15 जून आसपास गुजरात में चौमासु विधिवत रीते बेसी जवानु हवामान विभाग द्वारा संभावना व्यक्त कराई। भुज नगर पालिका द्वारा चौमासा दरमियान पानी भरावा समस्या निवारवा हमीसर तलाव में पानी की आवक वधारवा प्री मोनसून अंतर्गत नाला सप्लाई कामगीरी शुरू कराई। मुख्य समाचार पूरा थया।

हरभजन वाणी आप सब ले रहे थे। झारखंड में हिंदी गीतों का कार्यक्रम समाप्त हो गया। प्रसारण आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा केन्द्र पर करवामां आव्युं। 7 वाजे 10 मिनिटे सांभळशो प्रादेशिक समाचार।

विश्व कक्षा में आयोजित योगासन स्पर्धा में भारत का 6 सीनियर सहित कुल 7 चंद्र जीता है। गईकाले भारत भारतीय सब जूनियर बॉयज ट्रेडिशनल ग्रुप की टीम नेपाल ने हराने सुवर्ण चंद्रक जीतो, जबकि भारत की जूनियर गर्ल्स ट्रेडिशनल ग्रुप की टीम नेपाल ने हराने सुवर्ण चंद्रक जीतवा में सफलता मेळवी। मेडल टेबल में भारत टोच नु स्थान जारी रख्यू छे। इंडियन एसोसिएशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ भरूच अंकलेश्वर शाखा द्वारा 2 दिवसीय गुजकॉम परिषद नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ परिषद दरमियान आरोग्य ने सलामती, कर्मचारी ने सुखाकारी, मानसिक आरोग्य, व्यवसायजन्य रोगों की अटकायत तेमज उद्योगों में उभा थता नवा आरोग्य पड़कारों जेवा विषयों पर निष्णात द्वारा मार्गदर्शन आपवामां आव्युं हतुं। आ परिषद उद्योगों में वधु सुरक्षित और स्वस्थ कार्य संस्कृति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान आप जामनगर सिक्का में आवेल गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड GSECL खाते आज भूकंप अंगे मेगा मॉक ड्रिल योजाई। आपत्ति समय त्वरित और असरकारक प्रतिसाद सुनिश्चित करने आ मॉक ड्रिल नु आयोजन करायु हतु। गीर सोमनाथ जिला में राष्ट्रीय रक्तपित्त जागृति अभियान हेठ आरोग्य कर्मचारी 174 विस्तार की मुलाकात लेशे। 8-18 जून सुधी लोगों ने जागृत कर कुष्ठ रोग एटले के रक्तपित्त दर्दियों ने विनामूल्य सारवार अपाशे। वलसाड जिला वापी ने आरची घेटिया राज्य तेमज राष्ट्रीय स्तरे बेडमिंटन में 17 गर्ल्स डबल्स कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंकिंग में 13मो क्रमांक हासिल कर्यो छे। मात्र 17 वर्ष की वये आरची अंडर 17 कैटेगरी में 5 वक्त गर्ल्स डबल्स राज्य चैम्पियन, 2 वक्त मिक्स डबल राज्य चैम्पियन बनी है। उपरांत राष्ट्रीय कक्षा की स्पर्धाओं की साथ साथ अंडर 19 कैटेगरी में आरची उत्तम देखाव करता 4 वक्त गर्ल्स डबल्स राज्य चैम्पियन, मिक्स डबल चैम्पियन तथा सिंहों में बेबीसी नामने रोग लक्षण जोवा मळ्या बाद जूनागढ़ पशुपालन विभागे गाय और भैंस जेवा पशु पर इतरी नाशक दवा छंटकावनी कामगीरी शुरू करी छे। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले गांधीनगर खाते निर्माणाधीन विविध विकास प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा करी। वन और पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाड़िया पर्यावरण की सुरक्षा ने सरकार और नागरिकों की सामूहिक जवाबदारी गणाई। राज्य में कायमी पुलिस वडा तरीके आईपीएस अधिकारी GS मलिक की नियुक्त थी। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में आज वरसाद आगाही। अहमदाबाद में रमाई रहे विश्व योगासन चैम्पियनशिप में भारत का रोहन तैयारी सुवर्ण चंद्रक जीतो। आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा केन्द्र पर प्रादेशिक समाचार पूरा थे। हम पिछले रात्रि 7:50 राष्ट्रीय समाचार सांभ सकस। नमस्कार।

0: रास्ते में मेरे बहन को राजी हमारा संगठन ना प्रमुख छे हमें 5 वर्ष प्रमुख को इनको बदलाव कर रहे छे संगठन पर हमरा छेला 3 वर्ष थी जसुबेन कार्यरत छे तो जसुबेन एक खीरसरा एक नाना गाम में पोते पशुपालन नु दूध वेचवानी ने हूँ करता पर एमने काम में बहु रस तो
1: अच्छा
0: एटले एमने बहु एम नक्की करू के उम्र ओरम गयो तो
2: સુમિત્રાબેન જસુબેન વાત કરી કે તમે

0: irgendwann so gedacht, okay, das hat mir hat so noch ein Wahnsinn, wo man dann sie immer verändert. Der hat so eine Kurse immer bedeutbar gemacht, jetzt gemacht er nicht. Bedeutend. Jede Muskel eine Parasite, die Gamera nennt er. Dann die Gamera, die sie immer wo Hucku gab sie, wo Pani gegangen kam.
1: Und er dann, wo er sie da war,
0: ich bin die Kudra, die Adar in Hohen Kaibe. Dann, Gorapan, Prashma, ich lebe da, wo die Ecke bei, Mohr, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, मिठाई में मसूरी करा लेते हैं, कड़िया काम करा लेते हैं, बीजा काम लेते हैं, बड़ा बड़ा लोगों बाहर जाओ लेते हैं, लोगों को तैयार ही करेंगे। बड़ा जरा हमें लोगों तो हमारी अली ना सकती संगतियाँ नहीं, कमार बोलने को हमार गांव संगतन बने होती है, खेड़े से रानी अंदर हमारा हो गया उसे गांव संगतन हुआ मैं बता इस तरह के लिए दिला है एक बार में तो अरे वो बिचार है ना कि आप लोग को जो मजदूरी करवाने के बाद जैसे तो आप लोग गांव में अपने काम कहीं ना कर सके आने के लिए नहीं हो सके तो हमें एक चलाने चार थी पांच वर्ष थी हमारू एक मेरे गांव काम गांव में गांव में सरकार साथ है मेरे ने हमारे गांव में अंदर काम ले रहा हूँ मैं मेरे गांव का काम जरा चालू थी तेरे हमारा लोगों जो भाग थाने जाता था इन लोगों और तेरे टोटल घर है इनसे अरे गांव में गांव में कोई मजदूरी मारे इनसे अरे एक मैंने गांव बदल हमारे गांव में जीना जीना काम हुए तो हमारा हमारा तीन चार दिन विधवा दिनों से हमने एक मते तेरे घर में पंचायत में अंदर कि अपना विधवा दिनों से तो उन्होंने क्यों सो तो ये पूरा भगा करवाया गांव में भरा नाम भरा तो गांव गांव में पूरा भरा करवाया हमने एक पूरा हम खाकर बनाया हमने एक खाता जो लुकवाई जाए वही ना ऐसा हमारे लिए गांव में बड़ा दुश्मन था हमने गांव के बदले में हमारा आज के लिए सूट सवाया नाना नाना गांव में गिरना काम ऐसे हमने एक वाते था तो हमारा गांव में अंदर हमारे जो रोड से हमारा गांव थी ये अपने के लोगों के लिए बना रहा हूँ वो मोटा जंगल से तो जंगल में अंदर जो हमारा कता हमने जरे मेरे गांव में काम पूरा किया तो तेरे हमने कोई सफाई नहीं की बर्तन काट करना हमने ये बर्तन कोई कोई कंपनी में माफ करना अरे इतना काम आते आते अरे दिन दिन में भरण पोषण हो पा रहे अरे अरे एक मती का अंदर गांव में अंदर अपना सो गया उसे तो गांव में सप्लाई गांव में हो गई जुए और बाहर गांव में ना करे हमारे लिए मिल गई से कि बेर हमारे काम नहीं है एक गांव सफाई में तो गांव में सरकार बाहर गांव बदल गई है हमारे पोता नहीं रहते हैं बेर वो जो हमारे यहाँ में लगे बेर धुना रही से बहुत काम है मैंने गांव से पार करिए मेरे लिए हमारे जो संगठन बनो हमें जरा जरा आरा जुदा जुदा काम ना मार का जरा हमने अभी हमने आगे आगे नानी नानी दिशा फुटती थी अपने अपने गांव में सुधारा करिए अभी एक ये भी होते हैं तो खिलाफ से नहीं हमारे ये एक गांव में बात है दोपहर विधवा दिन हो गया तो हमें बदले मटे करे हमें गामर गांव में जो नहीं खबर हुए हमें वो आंखें पहले तो मेरे गांव में बारिश देने की दुआ अभी ना करे बदले बहुत मटे हमने कहा पर जब बारिश देने से इन्हें सुना तो हमें कहीं ना जब

0: महाराज को कहना बनना उनको वहाँ पे उनको मेरे विधवा जब दोनों से लकी करेंगे से करेंगे विधवा बनो का क्या विधवा बनो में लकी करेंगे से एक विधवा का मेरा पूरी से फ्रांग बनो विधवा बनो वहाँ सीधा जमीन में तो दस सीधा जमीन में कर पच्ची वही जमीन में घर में जाके वो ये हार हार इन्हें वो तमारे जब लोग तार भर में जमीन के देखे तुम्हारे घर में दस सीधा एक विधवा का बहुत पूरा आज पर मानो जो है उद्धार वहाँ विधवा बनो से तो हम पोता ने घर में जे बार होते हैं घर से खावन धन्य पाक से मानो यही करी
1: જીવન બહુ વધારે કન્ફ્યુઝન વાળું હોય છે એટલે અને એમને તો આખા સંગઠને જે નક્કી કરેલું હતું કે આવા માંગલિક પ્રસંગ હોય કે કઈ એમને મૂંઝવણ થતી હોય ત્યારે તમે લોકોએ જે
0: છોકરો
2: ભરવા ના કરાય તો સૌ તમે બોલું પોતે એ હોય કે એ દિન ના ઘરે પાંચ બહેનો જાય અને બંને કરાવી આવે આપણે જાણ તમે કરાવી

0: आकाशवाणी समाचार चैतन्य जोशी वाजे छे। सर्वप्रथम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद में अध्यक्षता करी। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह कहूं वैश्विक अनिश्चितता वच्चे भारत विश्व की सबसे झड़पती विकसती अर्थव्यवस्था बनी रही है। केन्द्र सरकार खाद्य तेल माटे प्रमाणभूत पैकेज रजू कराया। केन्द्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भारत में युवाओं ने देश की सबसे मोटी ताकत गणाई और भारतीय पुरुष हॉकी टीम जापान ने हराई तीजी वक्त अंडर 18 एशिया कप जीतो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद में सभ्यों से बैठक में अध्यक्षता करी। प्रधानमंत्री ईएसीए वैश्विक उथल पाथल समय में भारत में आर्थिक विकास वेग आप विविध विचारों पगलों की चर्चा करी। जीवन जीवन की सरलता व्यवसाय करने की सरलता सुधारा विविध सुधाराओं की चर्चा कर सभ्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष की भारत और विश्व पर असर में मूल्यांकन आप। प्रधानमंत्री सोशियल मीडिया संदेश में कहूं कि तेमने भारत में आर्थिक परिवर्तन और लांबा गाड़ा विकास प्राथमिकताओं संबंधित विविध मुद्दों पर चर्चा करी। सुधारा यात्रा में वधु गति मेळवा जीवन जीवा सरलता तेमज व्यवसाय करने की सरलता सुनिश्चित करने अंगे दृष्टिकोण पर शेर कर्या। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नॉर्वे चेस 2026 नो खिताब जीतवा बदल आर प्रज्ञा नंदा ने अभिनंदन पाठव्या था। श्री मोदी सोशल मीडिया संदेश में कहूं कि आ नोंधपात्र सिद्धि तेमने सतत श्रेष्ठता ने प्रतिबिंबित करे। प्रधानमंत्री तेमना भविष्य में प्रयासों में तेमने शुभेच्छा पण आपी हती। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ग्रांडमास्टर आर प्रज्ञा नंदा ने अभिनंदन पाठव्या। सोशल मीडिया संदेश में कहूं कि समर्पण तेजस्वी चाल और व्यूहात्मक विचार श्रेणी द्वारा तेमने जीते देश ने गौरव पायू छे। तेमने कहू कि युवा चेस्टार की सिद्धि देशभर में युवाओं ने प्रेरणा आपती रहेशे। पंजाब में फिरोजपुर जिले में थे अकस्मात पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऊंडो शोक व्यक्त करो। सोशियल मीडिया संदेश में मृतकों परिवारों प्रति संवेदना व्यक्त करी और अकस्मात में घायल थे लोगों झड़प से स्वस्थ होने की कामना करी। प्रधानमंत्री मृतकों परिवारों ने राष्ट्रीय राहत भंडोल में 2 लाख रूपया और घायलों ने 50,000 रूपया की सहायक जाहरात करी। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह जणाव्युं छे कि ज्यारे घणा देशो आर्थिक अनिश्चितताओनो सामनो करी रह्या छे त्यारे भारत विश्वनी सौथी झड़पथी विकसती मुख्य अर्थव्यवस्था बनी रही छे। सांभळीए एक अहेवाल।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता नवाचार बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वास

अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।

0: خبر من چرچه کرو موشه ویدیش منتوالا نپراو پر رندیر جایس پلا جنانگو تو که ملاقات دارو پنا نیپر بچلی خاص پاگی داری نی مدو مجبوط مناو سه रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लंबा समय से पड़ता रेलवे प्रोजेक्ट्स ने उकेल दी राज्य में रेलवे मार्गगत विकास में नवा युग की शुरुआत थी से कोलकाता में अमरनाथ खाते पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सुवंदु अधिकारी साथ संयुक्त पत्रकार परिषद दरमियान श्री वैष्णव ने माहिती अपनी थी कि वर्ष 2026-27 में रेलवे बजट में पश्चिम बंगाल में 14,205 करोड़ रूपये फाड़वा है। रेलवे मंत्री आगामी 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो मे 60 नवी ट्रेनों शुरू करने जाहरात करी। केन्द्र सरकार लीगल मेट्रोलॉजी फ्रेमवर्क हेठ खाद्य तेलों में प्रमाणभूत पैकिंग कर रजू कराए जो बजार में बहुत पारदर्शिता ने एकरूपता लावे छे। ग्राहक बाबत खाद्य और जाहिर वितरण मंत्रालय जणाव्युं हतुं कि सुधारेल नियमों हेठ पाम तेल, पामोलिन, सोयाबीन तेल, सूर्यमुखी तेल, सरसों तेल, मगफड़ी तेल, तालनु तेल, चोखा भूसा तेल, कपासना बीजनु तेल और मकाई तेल सहित मुख्य खाद्य तेलों प्रमाणभूत पैक कद निर्धारित करवाया है। मंजूर पैक कद 200 ग्राम 500 ग्राम 1-5 किलो 15 किलो और 20 किलो है। मध्य प्रदेश में भाजपा बने उम्मीदवार पार्टी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल आज राज्यसभा चूंटनी उम्मीदवारी पत्र भरा भोपाल विधानसभा रिटर्निंग ऑफिसर समक्ष उम्मीदवारी पत्र रजू कर प्रसंगे पार्टी वरिष्ठ नेताओं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भाजपा प्रदेश प्रमुख हेमंत खंडेलवाल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हाजिर रहा था। कांग्रेसे मंदसौर भूतपूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने उम्मीदवार तरीके मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 बैठकों जीवन प्रसारण आप हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गुजरात पर प्रसार भी सकशो वो समाचार मेरे हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/eu और हमारा XML AIR न्यूज _ ABID ने फॉलो कर सो। केन्द्रीय युवा बाबतों ने रमतगमत मंत्री मनसुख मांडविया कहू कि भारत में युवा देश की सौथी मोटी ताकत है 2047 सुधी में विकसित भारत में स्वप्न ने पूर्ण कर अग्रणी भूमिका भजवशे। आज नवी दिल्ली में यूथ फॉर डेवलप इंडिया माय इंडिया यूथ कन्वेक्शन ने संबोधता श्री मांडविया कहू कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्र निर्माण में युवा ने स्वैच्छिक योगदान की आकांक्षाओं विचारों और भावना ने शेयर करने देश ने आ प्लेटफॉर्म पूरु पड़ू छ।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है यानी कि देश युवा देश है। इस देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE मार्क वेरिफिकेशन और री मूल्यांकन अरजीओ सबमिट करने की अंतिम तारीख 7 जून सुधी लंबावी छे। CBSE सोशल मीडिया संदेश में जणाव्युं हतुं कि विद्यार्थी हवे आवतीकाले मध्यरात्रि सुधी तेमनी अरजीओ सबमिट करी शकशे। अगाउ अंतिम तारीख 6 जून हती। CBSE तमाम पात्र विद्यार्थियों ने विस्तृत समय मर्यादा ने ध्यान में राखी निर्धारित समय मर्यादा में अरजी प्रक्रिया पूर्ण करने अपील करी छे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावते जणाव्युं हतुं कि छेल्ला 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावॉट थी वधीने 155 गीगावॉट थी छे। श्री शेखावते आज एक सोशियल मीडिया संदेश में जणाव्युं हतुं कि 40 लाख थी वधु घरों सौर ऊर्जा उपयोग कर रहा छे। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता बमणी थवी ए प्रगति तेमज पर्यावरणीय संरक्षण पुरावो छे। एयरपोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया देशभर में हवाई मुसफरी माटे कनेक्टिविटी मजबूत करवा माटे बे खानगी कैब कंपनीओ साथे MOU पर हस्ताक्षर कर्या छे। आ करारो भारत में मुख्य एयरपोर्ट पर मुसफरों ने सीमलेस सस्तु और विश्वसनीय कैब सेवा प्रदान करशे जे तेमनी मुसफरी ने वधु अनुकूल और आरामदायक बनावशे एम ऑथोरिटीए सोशियल मीडिया संदेश में जणाव्युं हतुं। ईरान सर्वोच्च नेता मुश्तबा खानानी लश्करी सलाहकार मोहसिन रोजाई अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इजरायल की स्वतंत्र रीते निर्णय लेवा होर्मुज स्ट्रेट नाकाबंदी समाप्त करवा ईरान ने जप्त करेली संपत्ति ने मुक्त करवा हाकल करी छे। एक टेलीविजन चैनल साथ मुलाकात में रोजाई कहू कि बने पक्षों वच्चे वाटाघाट अटकी गई है ट्रम्पे आ मुलाकात तोड़नी चाहिए। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम आज काका मेघहारा में फाइनल में यजमान जापान ने 4-1 हरावी तीजी वक्त अंडर 18 एशिया कप जीतो। भारत माटे आशीष पुटीए हेट्रिक करी जारे कैप्टन केतन पुष्पावाए विजेता टीम साथ विजय गोल कर्यो हतो। अगाउ भारतीय महिला टीमें दक्षिण कोरिया ने 3-0 हरावी कांस्य चंद्रक जीत्यो हतो।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्वामिनी का पहला भाग। वाचिका है ममता सिंह।
1: शिवदास ने भंडारे की कुंजी अपनी बहू राम प्यारी के सामने फेंक कर अपनी बूढ़ी आंखों में आंसू भर कर कहा, बहू आज से गृहस्थी की देखभाल तुम्हारे ऊपर है। मेरा सुख भगवान से नहीं देखा गया, वही तो क्या जवान बेटे को यूं ही छीन लेते। उसका काम करने वाला कोई तो चाहिए, एक हल तोड़ दूं तो गुजारा न होगा। मेरे ही कुकर्म से भगवान का ये कोप आया है और मैं ही अपने माथे पर उसे लूंगा। बिरजू का हल अब मैं ही संभालूंगा। अब घर की देख रेख करने वाला, घर में उठाने वाला तुम्हारे सिवा भला दूसरा कौन है? जाने दो, रो मत बेटा, भगवान की जो इच्छा थी वो हुआ और जो इच्छा होगी वही होगा। हमारा तुम्हारा क्या बस है? मेरे जीते जी तुम्हें कोई तेरी आंख से देख भी न सकेगा बहू। तुम किसी बात को सोचो मत। बिरजू का तुम्हें तो अभी बैठा हो ना। राम प्यारी और राम दुलारी दो सगी बहनें थी। दोनों का विवाह मथुरा और बिरजू दो सगे भाइयों से हुआ। दोनों बहनें नैहर की तरह ससुराल में भी प्रेम और आनंद से रहने लगी। शिवदास को पेंशन मिली, दिन भर द्वार पर बैठे गपशप करते। मेरा पूरा परिवार देख देख प्रसन्न होते और अधिकतर धर्म चर्चा में लगे रहते। लेकिन देव गति से बड़ा लड़का बिरजू बीमार पड़ा और आज उसे मरे हुए 15 दिन बीत गए। अब क्रिया कर्म से फुर्सत मिली और शिवदास ने सच्चे कर्मवीर की भांति फिर जीवन संग्राम के लिए कमर कस ली। मन में उसे चाहे कितना ही दुख हुआ हो, उसे किसी ने रोते नहीं देखा। आज अपनी बहू को देखकर एक क्षण के लिए उसकी आंखें सजल हो गईं, लेकिन उसने मन को संभाला और रुद्ध कंठ से उसे दिलासा देने लगा। कदाचित उसने सोचा था घर स्वामिनी बनकर विधवा के आंसू पुछ जाएंगे, कम से कम उसे इतना कठिन परिश्रम न करना पड़ेगा। इसलिए उसने भंडारे की कुंजी बहू के सामने फेंकी थी। वैधव्य की व्यथा को स्वामित्व के गर्व से दबा देना चाहता था। राम प्यारे ने पुलकित कंठ से कहा, ये कैसे हो सकता है दादा कि तुम मेहनत मजूरी करो और मैं मालकिन बन बैठू? काम धंधे में लगी रहूंगी तो मन बहलता रहेगा, बैठे बैठे तो रोने के सिवा और कुछ नहीं होगा। शिवदास ने समझाया, बेटा देव गति से तो किसी का बस नहीं, रोने धोने से खाना खाने के सिवा और क्या हाथ आएगा। घर में भी तो बीसों काम है, कोई साधु संत आ जाए तो पाहुना ही आ पहुँचे, उनकी सेवा सत्कार के लिए किसी को तो घर पर रहना ही पड़ेगा। बहू ने बहुत से हीले किए पर शिवदास ने एक न सुनी। शिवदास के बाहर चले जाने पर राम प्यारी ने कुंजी उठाई तो उसे मन में अपूर्व गौरव और उत्तरदायित्व का अनुभव हुआ। जरा देर के लिए पति वियोग का दुख उसे भूल गया। उसकी छोटी बहन और देवर दोनों काम करने गए हुए थे। शिवदास बाहर था, घर बिल्कुल खाली था। इस वक्त वो निश्चिंत होकर भंडारे को खोल सकती है। उसमें क्या क्या सामान है, क्या क्या विभूति है, ये देखने के लिए उसका मन लालायित हो उठा। इस घर में वो कभी न आई थी। जब कभी किसी को कुछ देना या किसी से कुछ लेना होता था तभी शिवदास आकर इस कोठरी को पूरा करता था, फिर उसे बंद कर ये ताली अपनी कमर में रख लेता था। राम प्यारी कभी कभी द्वार के दरवाजों से भीतर झांकती थी पर अंधेरे में कुछ न दिखाई देता था। सारे घर के लिए वो कोठरी को तिलस्म का रहस्य था जिसके विषय में भांति भांति की कल्पनाएं होती रहती थी। आज राम प्यारी को ये रहस्य खोल कर देखने का अवसर मिल गया। उसने बाहर का द्वार बंद कर दिया, कि कोई उसे भंडारा खोलते न देख ले। नहीं तो सोचेगा वे जरूरत इसने भला क्यों खोला। और आकर कांपते हुए हाथों से ताला खोला। उसकी छाती धड़क रही थी कि कोई द्वार में खटखटाने लगे। अंदर पांव रखा तो उसे कुछ इसी प्रकार का लेकिन उससे कहीं तीव्र आनंद हुआ जो उसे अपने गहने कपड़े की पिटारी खोलने में होता था। मटकों में गुड़, शक्कर, गेहूं जो आदि चीजें रखी हुई थी। एक किनारे बड़े बड़े बर्तन भरे हुए थे जो शादी ब्याह के अवसर पर निकाले जाते थे या मांगने पर दिए जाते थे। एक आले पर माल गुजारी की रसीदें और लेन देन के पुर्जे बंधे हुए रखे थे। कोठरी में एक विभूति सी छाई हुई थी मानो लक्ष्मी अज्ञात रूप से यहाँ विराज रही हो। उस विभूति की छाया में राम प्यारी आधे घंटे तक बैठी अपनी आत्मा को तृप्त करती रही। प्रतिक्षण उसके हृदय पर ममत्व का नशा सा छाया जा रहा था। जब वो उस कोठरी से निकली तो उसके मन के संस्कार बदल गए थे मानो किसी ने उस पर मंत्र डाल दिया हो। उसी समय द्वार पर किसी ने आवाज दी। उसने तुरंत भंडारे का द्वार बंद किया और जाकर सदर दरवाजा खोल दिया। देखा तो पवन सिंह झुनिया खड़ी है और एक रुपया मांग रही है। राम प्यारे ने रुखाई से कहा, अभी तो एक पैसा घर में नहीं है जीजी, क्रिया कर्म में सब खर्च हो गया है। झुनिया चकरा गई, चौधरी के घर में इस समय एक रुपया भी नहीं है। ये विश्वास करने की बात न थी। जिसके यहाँ सैकड़ों का लेन देन है वो सब कुछ क्रिया कर्म में नहीं खर्च कर सकता। अगर शिवदास ने ये बहाना किया होता तो उसे अचरज न होता। प्यारी तो अपने सरल स्वभाव के लिए गांव में मशहूर थी। अक्सर ही शिवदास की आंखें बचाकर पड़ोसियों को इच्छित वस्तुएं दे दिया करती थी। अभी कल ही की तो बात है उसने जानकी को शेर भर दूध दे दिया था। यहाँ तक कि अपने गहने तक मांगने पर दे देती थी। त्रिपन शिवदास के घर में ऐसी सखरज बहू का आना गांव वाले अपने सौभाग्य की बात समझते थे। झुलिया ने चकित होकर कहा, ऐसा न कहो जीजी, बड़े गढ़ी में पढ़कर आई हूँ। नहीं तुम जानती हो मेरी तो आदत ही नहीं है मांगने जांचने की। बाकी का एक रुपया देना है, प्यादा द्वार पर खड़ा बकचक कर रहा है। रुपया दे दो तो किसी तरह ये विपत्ति टले। मैं आज के आठवें दिन आकर दे जाऊंगे। गांव में और कौन है जहां मैं मांगने जाऊं। प्यारी कस से मस्सन हुई। उसके जाते ही प्यारी सांझ के लिए रसोई पाने का इंतजाम करने लगी। पहले चावल दाल बनाना अपार लगता था और रसोई में जाना तो सूली पर चढ़ने से कम न था। कुछ देर दोनों बहनों में झाव झाव होती तब शिवदास आकर कहते, क्या आज रसोई न बनेगी। तो दो में से एक उठती और मोटे मोटे टिक्कर लगाकर रख देती मानो बैलों का रातिब हो। आज प्यारे तन मन से रसोई के प्रबंध में लगी हुई है। अब वो घर की स्वामिनी है।

0: बाहर निकलकर देखा कितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। बुढ़ोले दिन भर मक्खी मारा करते हैं, इतना भी नहीं होता कि जरा झाड़ू ही लगा दे। अब क्या इनसे इतना भी नहीं होगा? द्वार ऐसा चिकना चाहिए कि देख कर आदमी का मन प्रसन्न हो जाए कि नहीं कि उठता ही आने लगे। अभी कह दो तो तुम उठेंगे। अच्छा कि मुन्नी नान से अलग क्यों खड़ी है? उसने मुन्नी के पास जाकर नान में झाँका। दुर्गंध आ रही थी। ठीक मालूम होता है महीनों से पानी ही नहीं बदला गया। इस तरह तो गाय रह चुकी, अपना पेट भर लिया, छुट्टी हुई, और किसी से क्या मतलब। हाँ दूध सबको अच्छा लगता है। दादा द्वार पर बैठे चिलम पी रहे हैं, मगर इतना नहीं होता है कि चार घड़ा पानी में आंध में डाल दे। मजूर रखा है वो भी 3 कौड़ी का, खाने को 1.5 सिर, काम करते नानी मरती है नानी। आज आते हैं तो पूछती हूँ नान में आके पानी क्यों नहीं बदला। रहना हो रहे जाना हो जाए, आदमी बहुत मिलेंगे, चारों ओर तो लोग मारे मारे फिर रहे हैं। आखिर उससे न रह गया, घड़ा उठाकर पानी लेने चली गई। शिवदास ने पुकारा, अरे बहू पानी क्या होगा, इसमें तो पानी भरा हुआ है। प्यारी ने कहा, नांद का पानी सड़ गया है, मुन्नी भूसे में मुंह नहीं डालती, देखते नहीं हो कोस में दूर खड़ी है। शिवदास मार्मिक भाव से मुस्कुराए और आकर बहू के हाथ से घड़ा ले लिया। कई महीने बीत गए। प्यारी के अधिकार में आते ही उस घर में जैसे वसंत आ गया। भीतर बाहर जहाँ देखे किसी निपुण प्रबंधक के हस्त कौशल, सुविचार और सुरुचि के चिन्ह देखते थे। प्यारी ने गृह यंत्र की ऐसी चाबी कसती थी कि सभी पुर्जे ठीक ठीक काम करने लगे थे। भोजन पहले से अच्छा मिलता, समय पर मिलता, दूध ज्यादा होता है, घी ज्यादा होता है और काम ज्यादा होता है। प्यारी न खुद विश्राम लेती है न दूसरों को विश्राम लेने देती है। घर में कुछ ऐसी बरकत आ गई है कि जो चीजें मांगो घर ही में निकल आती है। आदमी से लेकर जानवर तक सभी सदस्य दिखाई देते हैं। अब वो पहले किसी दशा नहीं है कि कोई चीथड़े लपेटे घूम रहा है, किसी को गहने की धुन सवार है। हाँ अगर कोई रुग्ण और चिंतित तथा मलिन वेश में है तो वो प्यारी है, फिर भी सारा घर उससे जलता है। यहाँ तक कि बूढ़े शिवदास भी कभी कभी उसकी बदगोई करते हैं। किसी को पहर रात रहे उठना अच्छा नहीं लगता, मेहनत से सभी जी चुराते हैं, फिर भी ये सब मानते हैं कि प्यारी न हो तो घर का काम न चले। और तो और दोनों बहनों में भी उतना अपनापन नहीं है। प्रातः काल का समय था। दुलारी ने हाथों के कड़े लाकर प्यारी के सामने फेंक दिए और घुमाई हुई बोली, लेकर इसे भी भंडारे में बंद कर दे। प्यारी ने कड़े उठा लिए और कोमल स्वर में कहा, कहीं तो दिया, हाथ में रुपए आने दे, बनवा दूंगी। अभी ऐसा घिस नहीं गया है कि आज ही उतार कर फेंक दिया जाए। दुलारी लड़ने को तैयार होकर आई थी, बोली, तेरे हाथ से गाय को कभी रुपए आएंगे और काहे को कड़े बनेंगे, जोड़ जोड़ कर रखने में मजा आता है ना? प्यारी ने हंसकर कहा, जोड़ जोड़ के रखती हूँ तो तेरे लिए ही, कि मेरा कोई और बैठा हुआ है कि मैं सबसे ज्यादा खा पहन लेती हूँ, मेरा अनंत तब का टूट पड़ा है। बुलारी बोली, तुम न खाओ पहनो लेकिन जस तो पाती हो, यहाँ खाने पहनने के सिवा और क्या है? तुम्हारा हिसाब किताब मैं नहीं जानती, मेरे कड़े आज बनने को भेज दो। हाँ प्यारी ने सरल विनोद के भाव से पूछा, रुपये न हो तो कहाँ से लाऊं? दुलारी ने उद्दंडता से कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो कड़े चाहती हूँ कड़े। इसी तरह घर के सब आदमी अपने अपने अवसर पर प्यारी को 2-4 खरी खोटी सुना जाते थे और वो गरीब सबकी धौंस हंस कर सहती थी। स्वामिनी का तो ये धर्म ही है कि सबकी धौंस सुन ले और करे वही जिसने घर का कल्याण हो। स्वामित्व के कवच पर धौंस, आने, धमकी किसी का भी असर न होता। उसकी स्वामिनी कल्पना इन आघातों में और भी स्वस्थ होती थी। वो गृहस्थी की संचालिका है, सभी अपने अपने दुख उसी के सामने रोते हैं, पर जो कुछ वो कहती है वही होता है। इतना उसे प्रसन्न करने के लिए काफी था। गांव में प्यारी की सराहना होती थी। अभी उम्र ही क्या है, लेकिन सारे घर को संभाले हुए है बेचारी। चाहती तो सगाई करके चैन से रहती, इस घर के पीछे अपने को मिटाए देती है बेचारी। कभी किसी से हंसती बोलती भी नहीं, जैसे काया पलट हो गई।
1: मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्वर्णिनी का पहला भाग, वाचिका थी ममता सिंह, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन कवि। हम आपको बता दें, इस कहानी का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सुबह कहानी में। सुबह कहानी।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगी रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ
1: हमारे घोषकों के साथ जुड़कर बनाए अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक। फिल्म रेड 2 से ये गीत जुबिन नौटियाल

श्रेया घोषाल और सुगम नौटियाल को आप सुन रहे थे धड़क टू इस फिल्म से। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक विविध भारती से।

0: ये है विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह।

0: सत्र के साथ बैठक की, देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। देश के युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।

कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम 500 ग्राम 1 से 5 किलो 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरूआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए इसके न्यू ट्रेन नई जनरेशन के

संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रम्ञा सामी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारको दुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारको दुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चौथे लैवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लैवेंडर गोल्स ग्लोबल। दो दिन के इस महोत्सव में बैंगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लैवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लैवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लैवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के दो दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: खाड़ी देशों और

0: क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।

0: explains that Pakistan would not change this fundamental reality.
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपुटे ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने छठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन टाइगर ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर

यदि धरती के पास है विशाल हस्तियों का अमूल खजाना, फिर सुनिए कैसे बना ये

राजेंद्र कृष्ण साहब के शुमार फिल्म जगत के बेहतरीन गीतकारों में होता है। उनकी कविता में नजाकत है, जज्बात की गहराई है और दिल को छू लेने वाला फन है।

6 जून 1919 को शिमला में जन्म हुआ था अपने कलम से दिलकश नगमों को जन्म देने वाले इस गीतकार का। बहुत कम उम्र में ही राजेंद्र कृष्ण मोहित हो गए थे कविता पर। रोजी रोटी की जद्दोजहद में 1940 तक म्यूनिसिपल ऑफिस में क्लर्क की नौकरी की। उनकी इस नीरस नौकरी को रसीला बनाती रही फिराक गोरखपुरी, एहसान दानिश, सुमित्रा नंदन पंत और निराला जी की रचनाएं। 1940 के मध्य में राजेंद्र कृष्ण मुंबई आ गए। फिल्मों की दुनिया में बतौर लेखक और गीतकार अपनी प्रतिभा को आजमाने। संघर्ष की जंजीरें टूटी 1947 में जब फिल्म जंजीर के लिए उन्होंने लिखा अपना पहला गीत। 1947 में राजेंद्र कृष्ण ने लिखी फिल्म जनता की स्क्रिप्ट, लेकिन कामयाबी मिली 1948 में बनी फिल्म आज की रात से। निराशा भरी रातें ढल चुकी थी और राजेंद्र कृष्ण लगातार काम पाने लगे। 1949 में श्याम सुंदर के संगीत से सजी फिल्म लाहौर में उनके गीतों को बहुत लोकप्रियता मिली। उन्हीं में से एक था ये गीत।

तमिल के जानकार राजेंद्र कृष्ण उंदरव के मद्रास के मशहूर बैनर एवीएम की पहली पसंद बन गए। वहां के अन्य निर्माताओं ने भी राजेंद्र कृष्ण की रचनात्मक प्रतिभा की कद्र की। एवीएम

राजेंद्र कृष्ण ने अपने समकालीन लगभग सभी नामचीन संगीतकारों के लिए गीतों की रचना की। राजेंद्र कृष्ण ने करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी और कोई 300 फिल्मों के लिए लिखे अपने अनूठे अलबेले गीत। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बहुत देर बाद मिला 1965 में फिल्म खानदान की।

सन 1988 में शब्दों का ये चिटेरा हमारे होठों पर अपने गीतों की गुनगुनाहट छोड़कर शब्द बनने में ही

धरती पर बहती है सुरों की सरिता। बोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियाँ रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: आज सुनते हैं ऋषिकेश गंगोड़े जी का शास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुमॉरोज ब्रॉडकास्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गंगोड़े।
0: पुणे के एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्मे ऋषिकेश जी को 5 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता श्री पुरुषोत्तम गंगोड़े से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। इसके पश्चात उन्होंने डॉक्टर विकास कशाकर और पंडित यशवंत बुआ जोशी से 8 वर्षों तक ग्वालियर घराने के गायकी को बारीकियों से सीखा। इसके बाद ऋषिकेश जी ने आरटीसी संगीत रिसर्च अकादमी की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त की और कलकत्ता में ग्वालियर जयपुर आगरा घराने के दिग्गज पंडित उल्लास कशाकर के सानिध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया। उन्हें बनारस घराने के विदुषी गिरिजा देवी जी से ठुमरी दादरा और कजरी जैसे उपशास्त्रीय रूपों को सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
1: Born into a music loving family in Pune, Rishikesh was initiated into vocal music at the tender age of 5 by his father, Shri Purushottam Gangode. He later received extensive training for 8 years from Dr. Vikas Kashalkar and Pandit Yashwant Bua Joshi, learning the intricacies of the Gwalior Gharana. Thereafter, Rishikesh received the prestigious IPC Sangeet Research Academy Scholarship, coming under the tutelage of the stalwart Pandit Ulyas Kashalkar. For 6 years, he underwent intense training in the pure Gharana Gayaki of the Gwalior, Jaipur and other traditions. He was also fortunate to learn semi-classical forms like Thumri and Dabra from the legendary Vidushi Girija Devi of the Banaras Gharana.
0: ऋषिकेश गंगोड़े आकाशवाणी के ए श्रेणी के गायक कलाकार हैं। उनकी गायकी में संगीत का सौंदर्य, भव्यता और माधुर्य झलकता है जो सीधे श्रोताओं के मन को छू लेता है और यही उनके गायकी की विशेषता है। गायन के साथ साथ वे एक कुशल तबला वादक भी हैं और उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपने गुरु पंडित उल्लास कशाकर के साथ तबले पर संगत की है। वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ पुणे के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है।
1: ऋषिकेश गंगोड़े इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड इज स्टडीली कार्विंग अ निश फॉर हिमसेल्फ एज अ घरानेदार वोकलिस्ट हु ट्राइज टू गिव एक्सप्रेशन टू द ब्यूटी ग्रैंडियर एंड स्वीटनेस ऑफ म्यूजिक सो एज टू टच द ह्यूमन हार्ट एंड दिस इज द हॉलमार्क ऑफ हिज सिंगिंग। Beyond his vocal prowess, he is an accomplished tabla player and has even accompanied his guru, Pandit Ulyas Kashalkar, in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapeeth Pune.
0: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गंगोड़े जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर। अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागरा से। विलंबित रचना 3 ताल में निबद्ध है, वो है प्यारी पग होले होले। इसके पश्चात वे 3 ताल में ही 2 द्वित बंदिशें प्रस्तुत करेंगे, निरख शब देखत और रंग दिन कैसे कटेरी।
1: In tonight's program, he is accompanied on the tabla by Shri Ashay Kulkarni and on the harmonium by Shri Mukarand Karwandikar. Rishikesh begins his vocal recital with Rag Bihagara. The Vilambit composition is set to Teen Tal. This will be followed by Vritta compositions in Teen Tal.

0: where is she? I grew up missing her.
1: That was Rag Nageshri.
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गंगोरी जी का शास्त्रीय गान सुन रहे थे। उन्हें तबले पर श्री आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री मकरंद खरवंदकर जी ने संगत की। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी पुणे केंद्र के स्टूडियो में किया गया और यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to a classical vocalist artist by Rishikesh Gangurde in the National Program of Music. He was accompanied on the tabla by Ashay Kulkarni and on the harmonium by Makarand Kharwandikar. This program was recorded in the studios of Akashwani Pune and this program was broadcast from Akashwani Delhi.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत के आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने

0: की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा नव भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं के आकांक्षाओं विचारों और स्वैच्छिक योगदान के भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। देश के युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजन का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शशिर खरियाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जन संबंध, सेना पर संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल

0: व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नवन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान ने भारतीय अंडररेटिंग पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानिपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Mr. Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The economic

This is Akash Vani. In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants are Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator is Sonu Sood. Ye Akash Vani hai. Prastut hai Vishesh Shankhla. इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल महिला सशक्तिकरण का परिवर्तनकारी दशक। इसमें भाग ले रहे हैं प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सोनू सूद। इन द 12

0: Department, Prime Minister Narendra Modi has consistently said women empowerment is one of the key priorities of this government and the government's dream of upgrading women's development to women-led development has turned to reality thanks to the focused efforts of the government, be it education, health, financial inclusion, livelihood avenues, security, quality of life. The targeted schemes of the government have empowered and accorded respect and dignity to women as a powerful economic force, giving them confidence and opportunities to break new frontiers. To discuss this emergence of women as an integral and crucial part of nation building, we have with us two very special guests, Professor Sushma Yadav and senior journalist Aditi Tandon. So, Professor Sushma Yadav ji, we would like to start with you. हम आपसे जो आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है पिछले 12 वर्षों में एनडीए सरकार के इस कार्यकाल में उसके ऊपर हम आपसे डिस्कशन करना चाहेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन योजना हो जिसमें 32 करोड़ महिलाओं से अधिक के बैंक अकाउंट खुले पहली बार, या फिर जो एक एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का सपना पूरा करने वाला जो पीएम मुद्रा योजना थी उसमें से 3 में से 2 जो लाभार्थी थी वो महिलाएं थी और महिला एंटरप्रेन्योर्स को 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन्स प्राप्त हुए। सो ये स्कीम्स तो अच्छी थी लेकिन जो इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो महिलाओं के फेवर में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या इसे आप एक बड़ी उपलब्धि मानती है? कैसे देखते हैं आप इनके महत्व को?
1: बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए विकसित भारत महिलाओं के बिना हो ही नहीं सकता, मैं ये बात याद दिलाना चाहती हूँ यहाँ। और विकसित भारत का मतलब उनके लिए है एक सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी नारी समूह और नारी शक्ति। उनका मानना है कि जब तक महिलाएं इस विकास की यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगी तब तक भारत विकसित नहीं बन सकता। और आप जानते हैं कि उनका इस समय सबसे बड़ा ध्येय, उद्देश्य और स्वप्न वो सब विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 है। उस यात्रा के लिए उन्होंने, और आप जानते हैं कि जो शक्ति है वो शक्ति मानसिक तो होती है, बौद्धिक तो होती है, बट आर्थिक सबसे अधिक होती है, जो दिखाई देती है। मानसिक और बौद्धिक शक्ति दिखाई नहीं देती है लेकिन आर्थिक शक्ति तो स्पष्ट दिखाई देती है। इससे सबसे पहले वित्तीय समावेश की बात उन्होंने की है और वित्तीय समावेश में जनधन खाते सबसे पहली योजना है जिससे उन्होंने पूरे देश को ये अवसर दिया कि वह बैंकों के साथ जुड़ सके और बैंकों की जो वित्तीय सहायता है वो सबको उपलब्ध हो सके। इसमें सबसे पीछे रहने वाली महिलाएं थी, इसलिए महिलाओं को इसमें शामिल किया और ये आश्चर्य की, सुखद आश्चर्य की बात है कि अब वो 50% से अधिक खाते जो है वो महिलाओं के खुले हैं, क्योंकि शायद उन्हें ही बैंक तक जाने की झिझक भी थी
0: जी।
1: और बैंक तक जाने के लिए सुरक्षा चाहिए थी। तो जो लगभग 30 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं उसमें अब तक 61% लेटेस्ट डाटा इज 61% जो है। तो सबसे पहला जो मैं बात कर रही थी जनधन खातों की सफलता, लेकिन वो वही नहीं रुके क्योंकि सिर्फ जनधन खाते खुल जाए वही नारी को सशक्त नहीं करेंगे। लखपति दीदी का सपना दिखाया, उसको पूरा किया, क्योंकि कितनी सारी ये लखपति दीदी बनी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से। 3 करोड़ की पहले बात की थी लेकिन 10 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ चुकी है, मात्र काशी 15 करोड़ महिलाएं हैं। तो सामान्य 1 लाख रुपया, देखिए पहले जमाने में हम सपना देखते थे कि लखपति बन जाएंगे तो क्या क्या करेंगे, और शहरों में चाहे वो बहुत बड़ा सपना नहीं है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्र में जहाँ कैश नहीं है उतना, लखपति बनना अपने आप ही बड़ी उपलब्धि है। और महिला बन जाए तो लखपति का जो कंसेप्ट दिया, जो योजना दी, वह महिलाओं को करने वाली योजना है। और ये सिर्फ लखपति दीदी नहीं है, कमाने वाली बनती है, हुनर हाथ की बात उन्होंने की है। और मुद्रा योजना जो कि मुद्रा योजना है उससे महिला उद्यमियों को जो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का लोन मिला है, और जिन महिलाओं को ये मिला है वो धीरे धीरे MSME के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, अपने उद्यमों के माध्यम से, सबके माध्यम से कारोबार करने लगी है। और उन कारोबारों से आगे चलना मात्र इतना नहीं है कि वो कारोबार प्रारंभ किया है, वो लाख से आगे भी जाएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये प्रारंभ है लखपति योजना। नवकरण दीदी जो ड्रोन बनाई है उन्होंने, वह भी सशक्तिकरण का एक और स्वरूप है। और ये जो आंकड़े हैं विशेष तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण के, 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लीड कर रही है MSMEs को जो इस समय देश की प्रगति में अपना योगदान दे रही है। और महिला श्रम भागीदारी वृद्धि में भी भारत भी

0: के नहीं करते हैं। हमारा जो माता की सेवा है, पत्नी की सेवा है, बहन की सेवा, हम उन सबको काउंट नहीं करते दीदी, बट देयर ऑल वर्क्स, वो काम भी होता है जी। और जो लखपति दीदी के साथ किसान पीएम, जो पीएम किसान योजना है, अब एग्रीकल्चर फील्ड में भी मोदी जी ने दृष्टि डाली है, और जो महिलाएं कृषि कर सकती है, और आप जानते हो भारत बहुत वर्षों से कृषि इसका एक मेन आयाम रहा है इसकी अर्थव्यवस्था का, तो पीएम किसान योजना जो बनाई है विशेष तौर पर उसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगभग वह भी 3 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुँच चुकी है। नहीं, जेंडर बजटिंग तो चली रही थी पहले से, उसमें एलोकेशन बढ़ा है। फ्री मार्क्स एक आधुनिक व्यापार और अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास है कि महिला उद्यमों के लिए बाजार ही मुश्किल था। महिला उद्यमी है इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपना सामान लेकर कहा जाए तो फ्री मार्क्स का कंसेप्ट नहीं है। और अगर इन सबको हम जोड़ देते हैं तो आप देखें कि महिलाओं के लिए आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक मजबूती के, आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग खुले हैं। और हम ये मानते हैं वन हू कंट्रोल्स द पर्स कंट्रोल्स द डिसीजन मेकिंग रोल्स, तो ये सशक्तिकरण मात्र नहीं है जी, ये आजीविका के मूल्य है।
1: Sushma ji has so beautifully described, you know, the various ways in which financial empowerment has been made available for women. In fact, we were talking about the financial inclusion and the Pradhan Mantri Mudra Yojana, entrepreneurial inclusion, in which women have been major beneficiaries, and India's leading in increasing female labour participation among BRICS countries. 3 crore plus women-led MSMEs are contributing to the country's progress, and 45% of DPIIT recognized startups have female directors. How do you see this inclusion of women in a big way in the economic mainstream of the country?
0: Yeah, I think

0: said that she got a deal with an actual novel. You know, you can I hear so much that kind of a scheme of change here. Didn't pretend that I for cyber security and digital marketing. Don't you know that the team on a valley summer key? Or is it my disregard of a tavern? Pretty clearly, I was shut up. Is it a key?
1: Welcome.
0: My lady, I will let you know. It is just this workshop. Switch it up. Yes, I think it. जहाँ से आरंभ किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी ने बार बार उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो अब 11 करोड़ महिलाओं के पंच के एलपीजी कनेक्शन फिर जन औषधि केंद्रों के माध्यम से महिलाओं की बेसिक फैसिलिटीज के लिए सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मोर एंड मोर वुमेन आर ब्रॉट टू हॉस्पिटल इट्स मोर देन 7.3 करोड़ फिर मातृवंदना योजना जो पीएम मातृवंदना योजना है मोर देन 20,000 करोड़ विमेन वर्क और फिर मिशन इंद्रधनुष के तहत

0: 7 crore children and 3.96 crore pregnant women were registered, and 8.73 crore women were screened for cervical cancer. एक और जो आपने बात करी मातृत्व सपोर्ट दी जा रही है जी, सो मेटरनल मोर्टेलिटी रेट्स बहुत नीचे आए हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स नीचे आए हैं, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 68% से बढ़कर 90% से अधिक हो गई है जी, 98 बिल्कुल 98%। तो ये आपको लगता है कि एक तरह से माइंड सेट चेंज को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा?
1: लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है
0: जी,
1: कि दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं
0: जी जी,
1: क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से पहले तो रजाते ही नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, सुरक्षा भी थी, फिर जो अभी शौचालय सुविधा बढ़ी है, इज वन फ्रॉम 39% to 100%, एवरी हाउस होल्ड हैज अ टॉयलेट और अ कवर्ड टॉयलेट एज यू सी। सो ऑब्वियसली इंडिया एंड जो मातृ मृत्यु दर मोर्टेलिटी एज यू सेड which is really reduced from 130 to 80, which is a huge change.
0: Yes.
1: Not merely this, the maternal leave vacancies, leaves which were there granted before, they have increased from 12 weeks to 36 weeks. And I think that has given the mother and child a leverage in terms of health and quality time spent together, which will surely lead to healthier generations in coming times.
0: Women are healthier and then, you know, they are freed from duties like fetching water from miles, you know, to the Jal Jeevan Mission. You think they have more time to devote to, you know, economic activities?
1: More time to devote to economic activities, more time to devote to their capacity building, more time to devote to thinking about their future. You can see the women have dreams about their children now, especially the daughters. I have come across, as a woman myself, literally, I met so many women who were very, very eager that their children, especially girl children, come to higher education and go to fields which were unheard of before.

0: पोजीशन में जाते हैं और स्वस्थ राष्ट्र ही सशक्त राष्ट्र बन सकते हैं। दिस इज द लिंकेज बिटवीन वुमन सेल्फ एंड द एम्पावर्ड और विकसित भारत एज वी सी। आत्मनिर्भर भारत भी उसी में मिला हुआ है।
1: एब्सोल्युटली। कमिंग टू यू, अगर हम सेफ्टी की बात करें, डिग्निफाइड लाइफ की बात करें, तो जो मिशन

इंसिडेंट्स जब हमारी सोसाइटी में हुए उसे क्रिमिनल लॉज को बदला गया। वेरबिया के बाद आपको याद है कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉज लाए गए, लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि क्राइम्स अगेंस्ट विमेन बढ़ रहे हैं। और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद दो तीन बार बोला है कि सबसे अर्जेंट क्राइसिस यही है और इसी को रिजोल्व करने की जरूरत

पेरेंट्स को कि आप अपने बेटों को कल्चरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज समझाइए, उनको घर में ये प्रशिक्षण दीजिए, ये वैल्यू सिस्टम दीजिए, ये शिक्षा दीजिए कि महिलाओं की इज्जत करना ये जरूरी है और ये एक आम बात होनी चाहिए। मतलब ये सोसाइटी का कर्तव्य है, हर चीज सरकार नहीं कर सकती। हमने देखा है कि इस सरकार का भी एक बहुत बड़ा मुहिम रहता है जन भागीदारी का, जो बड़े बड़े चैलेंजेस सोसाइटी फेस करती है, जैसे हमने

0: की है जिन्होंने इन कुरीतियों को हटाया। मुझे लगता है वुमेन सेफ्टी को लेकर वही मुहिम इस वक्त चाहिए। सोसाइटी को खुद बोलना होगा कि इनफ इज इनफ, क्योंकि ये जो बात है अपने हाथ में लोगों को लेनी होगी। एक पॉलिटिकल बिल एक लीडर दिखा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री अपनी पॉलिटिकल बिल महिला सशक्तिकरण महिला सेफ्टी के पीछे दिखा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो एजेंट ऑफ चेंज है सोना वो समाज है, वो सरकार नहीं है। समाज सबसे बड़ा एजेंट ऑफ चेंज है। और जहां तक कि आपने जेंडर बजटिंग की बात की और आपने मिशन शक्ति की बात की, उसके तहत जेंडर फोकस एलोकेशन बहुत बढ़ाई गई है ओवर द इयर्स। जैसे अगर आप यही बजट उठा के देख लीजिए 26-27 का, उसमें सिग्निफिकेंट राइज किया गया है जेंडर बजटिंग के लिए, जिसका बहुत सारा पोर्शन महिला सशक्तिकरण और महिला सेफ्टी की तरफ जाएगा। इस वक्त करीब 10% जो हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया, 10% उसका जो टोटल बजट का हिस्सा है वो जनरल बजटिंग है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर उसको अच्छे से व्यय किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि सिस्टम इन प्लेस ना हो। आप सीसीटीवी लगा देंगे, आप वन स्टॉप सेंटर्स बना देंगे सुनो, लेकिन एक समाज का जो माइंडसेट है वो कैसे बदलेंगे? आप एक पुरुष का महिला की तरफ देखने का रवैया कैसे बदलेंगे? उसमें तो फैमिली किसका रोल आ जाता है ना, उसी में समाज का रोल आ जाता है।
1: बिल्कुल पार्टिसिपेटिव चेंज लाया जा सकता है और जो भी

0: लाइन्स है और 700 प्लस फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स है जो वुमेन को ही त्वरित जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए है। लेकिन इन सबका भी इस्तेमाल, ऑफकोर्स प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, बट अगर कुछ होता है तो ये हिम्मत होनी चाहिए, समाज का सपोर्ट होना चाहिए कि आप आगे आए और इन फैसिलिटीज का फायदा उठाएं ताकि आगे से जो है इस तरह के हादसे ना हो, मिनिमाइज हो। सो एक प्रोएक्टिव रोल सबको प्ले करना जरूरी है इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए भी।
1: बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो सिस्टम्स इन प्लेस है, पहली बार उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है जिसकी तरफ बहुत काम हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जुडिशरी और पुलिस सिस्टम, देखिए आप अगर पूरे विश्व में देखेंगे और आप अगर विश्लेषण करेंगे कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती है, कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री मानी जाती है, तो आप ये पाएंगे कि उन सोसाइटीज के लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास पुलिस सिस्टम में और जस्टिस सिस्टम में सबसे ज्यादा है, जजेस और कॉर्ट्स में। तो हमारे देश के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जब महिला अपना कोई कंप्लेंट लेकर पुलिस के स्टेशन में जाती है तो उसे ये कन्विंस्ड होनी चाहिए उस वक्त कि मेरी बात वहां बैठा हुआ पुलिस पर्सनल सुने।

0: और जजेस हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रशिक्षण हुए हैं। देखिए जब तक सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई है बहुत सारे पार्ट ब्रेकिंग जजमेंट्स आए हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से लॉज बदले गए हैं। आपको पता है कि पहले जमाने में हम इसी बात से जूझते रहते थे कि जजेस भी महिलाओं के यू कैरेक्टर को जज करने टू फिंगर टेस्ट बहुत आम होता था। आपका सबसे पहले आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती थी अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट का कोई कंप्लेन करें, लेकिन वो आप स्टैट्यूट बुक से हटा दिया गया है। अब अगर महिला कहती है उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो पुलिस उसको मानेगी, उसकी यूनिट सो मोटिव स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी और ओनर्स टू प्रूव अदरवाइज। वो परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम पर है ना कि महिला पर है जो पीड़ित है। सो ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसकी तरफ भी एक सोसाइटी जा रही है क्योंकि अब पूरा माहौल पॉलिटिकल विल इस तरफ है कि महिलाओं के साथ सरकार भी खड़ी है, पॉलिसी भी खड़ी है और इस वक्त कुछ कुछ हद तक लगता है कि समाज भी खड़ा है।
1: सुष्मा जी, आप अभी थोड़ी देर पहले डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई है शी मार्ट जो इनिशिएटिव है या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंदर जो वोनिया इनिशिएटिव है जिसमें 2 लाख से अधिक वुमेन लेड एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड है और इसमें 28,000 करोड़ से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन वुमेन लेड एंटरप्राइजेस को पिछले वित्त वर्ष में बिक्री हुई इस माध्यम से जो कि 27

0: कार्ड्स हर फील्ड में या इम्यूनाइजेशन में ट्रैकिंग डाउन की किसको कितना क्या टीकाकरण हुआ है। डिजिटाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है वुमेन एम्पावरमेंट में भी।
1: जी बिल्कुल मैं मानती हूँ, क्योंकि जो डिजिटल एक्सेस है विच इज इजीएस्ट फॉर वुमेन स्पेशली, इफ यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एंड यू कैन स्टिल एक्सेस मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज, नथिंग बेटर देन दैट, दैट इज ऑलमोस्ट बेस्ट। बिकॉज अपने आप में मूवमेंट या आवागमन जिसको कहते हैं वो महिला में समय भी लेता है, शक्ति भी लेता है और कई बार कुछ सीमाएं भी डालता है। इससे डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटल ट्रेनिंग और डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग ये टारगेट रहा है सरकार का इन सभी क्षेत्रों में, जो अभी आपने कही मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। लेकिन इनसे महिलाएं तैयार हुई है व्यापारी बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए और विकास के कार्यों में जुड़ने के लिए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य था। मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी कहते हैं हम क्या करेंगे, पहले उनको वित्तीय सहायता देंगे, फिर उनका कौशल विकास करेंगे और फिर उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे। रेसिपी बिकॉज इफ यू गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट विच दे विल नीड यूजुअली एंड मे बी आफ्टर सम टाइम दे डोंट इवन नीड, दे विल हैव देयर ओन ग्रुप्स, दे विल हैव देयर ओन फाइनेंसर्स आल्सो लाइक दे आर कमिंग अप नाउ, बट विद दैट यू आल्सो नीड लेटर स्किल्स बिकॉज स्किल्स कीप चेंजिंग एंड द मार्केट नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स, एट टाइम्स दे मे बी डिजिटल स्किल्स इन कमिंग टाइम एंड यू सी विमेन आर रियली वेरी गुड एट दैट बिकॉज दिस इज हार्ड एंड हैंड बोथ गोइंग टुगेदर एंड देन if you really train them into the right kinds of skills and empowerment techniques also, I would say, or things, then they are ready for the world. ये सरकार चाहती है women में development कब होगा, वो एक माध्यम तो यही है, पहला स्वास्थ्य, उसके बाद सुरक्षा, उसके बाद आर्थिक सहायता या आर्थिक स्वावलंबन, उसके बाद political empowerment। क्योंकि मैं ये बात जरूर करना चाहती हूँ यहाँ कि जिस प्रकार से महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी का हर स्थान पर स्वागत किया है, उनका साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है, उसके पीछे ये सारे तो नहीं, वो राजनीतिक सोच भी है जहाँ नारी शक्ति बंधन अब

0: ऑर्गेनिक्स एंड एक्सचेंज में आएगा। मुझे विश्वास है जो अभी योजनाएं चली है ये 10 गुनी 100 गुनी होकर आगे आएंगी। और जो माहौल अभी आप बात कर रही थी, अभी जी कह रही थी कि लगभग समाज के तैयार है, दोनों उसके लिए तैयार है।
1: इनफैक्ट जो आप बोल रही है, अगर हम पोलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करें तो महिलाएं 48.62% है इलेक्टोरेट का, और हमारा वोटर टर्नआउट जो है मैं हमारे से कह रही हूँ कि हम तीनों महिलाएं 63% से अधिक है जो पुरुषों से कुछ ऊपर है। और 14.5 लाख महिलाएं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में इलेक्ट हुई है जो की 46% है टोटल वहां जितने भी अधिकारी है उनका। एंड ये पाया गया कि जब से वुमेन आई है

0: executive acumen have Ruby?
1: Bilkul, I will say that, and I have been part of public policy and governance in India. I've seen it from very close. I can see women administrators, women representatives. First timer maybe, administration the first timer sabhi hote hain, so it really doesn't matter. They learn, and I've met administrators who say that we question our office when they say this can't be done. Toh humne unse pucha kyun nahi ho sakta hai? Why are we here? To likhe kanun hi sirf chalenge ya nagrik suvidhaye badhengi? आपको याद है अपने प्रधानमंत्री जी जब काशी में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था नागरिक देवो भव, यानी पढ़ाई दवाई दवाई सिंचाई सुनवाई उन तक पहुँचे। और जो महिला प्रशासक है वुमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पेशली ऑफ यंग वंस, दे हैव दिस इन देयर माइंड, वो गवर्नेंस का रूप बदलेगा। क्योंकि जब यही सेना होगी तो नीतियों का रूप भी बदलेगा, क्योंकि नीतियाँ भी जो फर्स्ट एक्सपीरियंस बनेगी केवल कंसल्टेंट्स नहीं बनाएंगे, प्रशासक और नागरिक मिलकर बनाएंगे, तो नीतियाँ भी अच्छी बनेगी।
0: आदित्य जी, आपको लगता है कि जैसे जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है तो अपने आप ही उनका जो सम्मान है, जो एक दर्जा है समाज में, वो बढ़ जाता है और समाज का भी जो माइंडसेट है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाता है।
1: इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट यार्डस्टिक ये होता है कि क्या कोई सिस्टम, क्या कोई सरकार इस चीज के लिए तैयार है कि एक साथ महिला और पुरुष लीडर्स एक ही टेबल पर बैठकर देश के भविष्य के लिए नीतियां बनाएं, चाहे लेजिस्लेशन बनाएं। तो नारी शक्ति का इस चीज को जगाने का कि हाँ सरकार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए तैयार है। अभी हम बात कर रहे थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, लोकल बॉडीज में महिलाओं का कितना बड़ा रोल अब हो चुका है। वो इसलिए संभव हुआ है सोनू, क्योंकि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दी गई थी और 33% सीट आरक्षित कर दी गई थी पंचायती लेवल पर महिलाओं के लिए। वो अब आते आते तमाम प्रदेशों में 50% कर दी है। इतना साल लग गए हैं महिला लीडरशिप को तैयार करते करते। तो अब हम जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं तो जब अब ये एक आकार लेगा, जब भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2029 का जो अगला इलेक्शन है वो 33% महिलाओं के साथ आरक्षण के साथ लड़ा जाएगा, अगर वो संभव हो पाया तो तब से लेकर फिर महिला सशक्तिकरण का असली दौर शुरू होगा, जब महिलाएं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनको अपना सही हिस्सा मिलेगा।
0: सो एज इंडिया मूव्स टुवर्ड्स द गोल ऑफ

0: 30 मिनट गैरफिल मेहंदी गीतों कार्यक्रम 12 बजे 12 मिनट राष्ट्रीय शिक्षण नीति 2020 के विषय विशेष कार्यक्रम संभालेशो कार्यक्रम में भाग लेशो प्रोफेसर सोनल पंड्या ने त्रिलोक संघाणी रजूआत दीपशिखा दुर्गापाल 12 बजे 30 मिनट सहयारी महीना माटे नो कार्यक्रम 1 वगैरह 10 मिनट देवांशी जोशी स्वर में सुगम संगीत 1 वगैरह 30 मिनट फौजी भाईओ माटे विशेष फिल्म संगीत नो कार्यक्रम जय भारती संज्ञान शिक्षण कार्यक्रम 2 वगैरह 40 मिनट जेमा कन्नड़ भाषा नु गीत शीखीश 5 वगैरह 10 मिनट गोविंदा फिल्म संगीत नो कार्यक्रम 5 वगैरह 45 मिनट प्राचीन भजन संदीप सोलंकी स्वर में दोहा छंद नायक प्रदीप चंद्रकांत स्वर में लोक संगीत कार्यक्रम में 6 वगैरह 30 मिनट प्रायोजित कार्यक्रम जैविक विविधता जतन 7 वगैरह 22 मिनट खेड़ भाई बहनों माटे नो कार्यक्रम गाम नो चोरो 8 वगे प्रायोजित कार्यक्रम हरियाणु गुजरात 8 वगैरह 30 मिनट गुजराती गीतों कार्यक्रम आज के फनकार कार्यक्रम रात्रे 9:30 मिनट 10 वगे रविवार सरीय रात्रि संगीत सभा में डॉक्टर मंदा सुधारानी नो कर्नाटक गायन सांभळीशुं प्रसारित कार्यक्रमों हवामान समाचार हवामान खाता की याद अनुसार आगे अमदावाद शहर तथा आसपास विस्तारों में आकाश अंशतः वादळछायुं रहेशे महत्तम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस आसपास रहने संभावना है आज महत्तम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड थे सामान्य करना लघुत्तम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड थे सामान्य रहा સાડા 8 વાગે હવામાં ભેજનું પ્રમાણ 52 ટકા રેકોર્ડ થયું હવામાન સમાચાર આપે સમય
1: 356.6 દશાંશ મીટર્સ એટલે કે 846 કિલો હર્ટ્ઝ પર આકાશવાણીનું આ અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર છે રાત્રિના 11 વાગ્યાને 48 મિનિટ થઈ છે અમારી આજની બીજી સભા અહીં સંપન્ન થાય છે ફરી મળીશું આજ મીટર્સ પર આવતીકાલે સવારે 5:50 મિનિટે ત્યાં સુધી આપની રજા લઈએ નમસ્કાર શુભરાત્રી જય હિન્દ